पाँव धरूं मैं फिर भी पायल बाजे हो रामा फिर भी पायल बाजे। मैया जी के घर का कोई खड़ा मोरे दरवाजे हो सामा खड़ा मोरे दरवाजे। चले जवानी पीछे पीछे चले जवानी, अरे चले जवानी पीछे पीछे बचपन आगे आगे।

अथी सुंदर मजेदार दो दो सॉन्ग सुनाए ये जबरदस्त कॉमेडियन आईडीआर 70-80-90 मैस्ट्रो असरानी कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा फ्रॉम द मूवी अलाप 1977 एक और जबरदस्त सॉन्ग आप सुनेंगे आई डू फिल्म अलाप 1977 और एक बार फिर महान गायक डॉक्टर येसुदास जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा जिंदगी को संवारना होगा

बयान जिंदगी को सवारना होगा। डॉक्टर येसुदास जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। लिखा है डॉक्टर राही मासूम रजा ये अति सुंदर बयान को और कंपोज किया है मैस्त्रो जयदेव वर्मा जी। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, और एक आखिरी बयान आई डू फिल्म अलाप आप सुनेंगे कंपोज बाय जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट जयदेव वर्मा जी, और सुनाने वाली है आप सभी को भारत का महान गाने वाली भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, साथ दे रही है दिलराज कौर माता सरस्वती शारदा।

A beautiful song, bhajan, composed by maestro Jaydeo Verma uit de film Alaap 1977, Saat Diriti Dilraj Kaur. तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, ये तक था आज का ये जो स्पेशल महान संगीतकार जयदेव वर्मा जी का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, स्टे ट्यून ऑन। आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नातिलक वर्क्स बॉयस अंत बताऊं, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप जब एक इवेंट और हनीसातर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं शोज वगैरह, या तो इवेंट वगैरह, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है यारो। सभी जानकारी 07 तक पर आप तार करें। किफायत, सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से ये कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल प्रताप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। सभी जानकारी 07 फेर तक दफ्तर कतार का नंबर और स्टूडियो कतार का नंबर 07 2067। जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, और इसके लिए हमारे फुल टीम के तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाएं। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी 07 3562 2047 पर आप तार करें। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, और नगमे आप सुन रहे हैं अगर फिल्म हमराही 1963 शंकर जय किशन के सांच पर आप सुनेंगे एक बार फिर सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी मिलके सुनते हैं ये जबरदस्त सॉन्ग, वो चले झटक के दामन, क्या बात है।

0: मिटा के मेरा दिल बोले गए मुझे राह में बिठा के वो चले।
1: जबरदस्त सॉन्ग uit de film हमराही 1963, वो चले झटक के दामन। रवि साहब जी के ब्यूटीफुल मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज्ड बाय शंकर जय किशन, अल्फा से था हसरत जयपुरी जी का। अगला बयान, मैं मन रे तू ही बता क्या गाऊं, ब्यूटीफुल सॉन्ग एक बार फिर सुरों का देवी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान है जो फिल्म हमराही कंपोज बाय शंकर जय किशन एंड रिटन बाय माएस्ट्रो शैलेंद्र जी।

मन रे तू ही बता क्या गाऊं। अति सुंदर बयान एक जो फिल्म हमरा ही 1963 भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी सुरोका कोकिला लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोज बाय शंकर जय किशन और अल्फाजे था शैलेंद्र जी का। करके जिसका इंतजार लेकिन शेर और शायरी के बाद कुछ आखिरी शेर हो जाए यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। कभी कभी हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कहते, फिर भी हम कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उनके धोखे के साथ तो जी सकते हैं पर उनके बिना नहीं। ये भी होता है रिश्तों में यारो। रास्ते में पत्थरों की कमी नहीं है, मन में टूटे सपनों की कमी भी नहीं है। चाहत है उनको अपना बनाने की मगर चाहत तो है उनको अपना बनाने की मगर उनके पास अपनों की कमी नहीं है। बहुत रोया था जब मेरा जन्म हुआ था और हंस रही थी ये दुनिया। बहुत रोया था जब मेरा जन्म हुआ था और हंस रही थी ये दुनिया। मगर दोस्तों एक दिन बदला जरूर लूंगा, हंसता हुआ जाऊंगा और रोएगी ये दुनिया। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाला कम और तकलीफ देने वाला ज्यादा मिलते हैं। आखिरी शेर यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। लोग मोहब्बत को खुदा कहते हैं, लोग तो मोहब्बत को खुदा कहते हैं, अगर कोई करे तो उसे इल्जाम देते हैं। अगर कोई मोहब्बत करे तो उसे इल्जाम देते हैं। कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते, कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते, फिर क्यों पहाड़ों से झरने गिरा करते हैं। यानी ब्रोकस झरने पहाड़ से क्यों गिरने लगते हैं। और ये लोग तो सोचते कि पत्थर कभी नहीं रोता, तो झरनों जब पत्थरों से टूटकर नीचे गिरते तो लोग सोचते हैं ना शायर ये कहता है कि पत्थर भी रोने लगा। तो ये था कुछ शेर हमारे शेर के चाहने वालों के लिए। वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है यारो, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान कि जिसका करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया हार। क्या बात है, ब्यूटीफुल लवली सॉन्ग। सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम रवि साहब और लता जी की आवाजों में फ्रॉम द मूवी हम राही।

धुन ये बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया एड फिल्म हम राही 1963 का ये सुपरहिट मूवी राजेंद्र कुमार और जमुना जी का ये ब्यूटीफुल मूवी आप श्रोताओं और उसी मूवी में से ये नगमा आप श्रोताओं ने सुना रवि साहब और लता जी के आवाज़ों में कंपोज बाय शंकर जय किशन। तो यार वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी हमराही 1963। दिल को छू लेने वाला नगमा है, क्या बात है, इतना दर्द से भरा हुआ ये बयान है कि रोंटे खड़ा हो जाएंगे आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं को इतना दर्द और इतना खूबी से ये नगमा को सजाया है शंकर जय किशन हसरत जयपुरी के अल्फाजे और जिस खूबी से रफ़ी साहब जी ने ये नगमा को गाया है जितने तारीफ किए जाए कम हैं कि ये आंसू मेरे दिल की जुबां है। सैकवेलिंस मन हाइल नोइत मार ये नगमा सुनकर बड़े बड़े के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिल के सुनते हैं अ मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय शंकर जय किशन और क्या दर्द है इस गाने में रफ़ी साहब जी की आवाज़ में।

सुंदर बयान दिल को छू लेने वाला नगमा रफी साहब जी के मधुर आवाज में। एड फिल्म गहरा दा ना फिल्म सॉरी फिल्म हम राही 1963 कंपोज बाय शंकर जय किशन। तुम्हारे प्रिय श्रोताओं साथियों यहीं तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारो कि जिस तौर तरीक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए। जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूं।

0: यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, और मिलते हैं आने वाले दिनों में आवाज के जरिए. सो सो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स, गुड बाय.
1: गीत रखे हैं तो चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं, प्लेन में जो रखा हुआ है आपका जाना पहचाना गीत इस तरह से.

बाहों में तेरे मस्ती के घेरे ये गीत सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जब आप चुने। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं। जी हाँ, फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से।

घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। फिल्म कलंक में से निकाले हैं और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साथ पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको और वो ये है।

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अकेली मत जाइयो निकती इंद्रियन सस्तख में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए वे वे वे फाउंड एफएम चैनल पर आप चुने जो लोग चुनकी मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हरी वीराम रुना लैला, रुना लैला आपको सुनाए ये शानदार गीत और हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। क्या ख्याल है, चलिए सुनते फिल्म काला पत्थर में से, काला पत्थर में से निकाल रहे हैं।

हम बनाएंगे एक आशियां, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए, ये दो पंछी दो तीन के फिल्म तपस्या में से निकाले हैं, क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, इस तरह से है।

साथियाँ नहीं जाना कि जी ना लगे, ये शानदार गीत चला और ये दुएट चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम रहेंगे रख प्लेयर में रखे माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चांद ग्रहण में से निकाले हैं जयदेव के साथ में।

0: तुम ही ने दिल को दिल समझा नहीं है, ये शानदार गीत हमने आपको सुनाए हैं फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सैफन नेखन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सैफन नेखन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन सैफन सैफन तक में। बात यह है ये फिल्म बना, रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला, और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं। बहरहाल नेकतीन सैफन नेखन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।
1: तेरा प्यार
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है, लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में। हमने चला दी, शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते, बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म दर्द में से निकाले हैं निगहतिन एन तख्त का ये रोमांटिक सॉन्ग, ये प्यार भरा गीत हम आपको सुनाए हैं।

कौन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने, जो लोग चुन के हैं आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये क्या सुना रहे हैं, वह क्या बात है। मुकेश और कंचन फिल्म धर्मात्मा में से

तुमने किसी से कभी प्यार किया है कंचन और मैथी मुकेश नीख दिन फाइव सही में तो धर्मात्मा में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश किया गया फोर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो लीजिए इस तरह से लगातार प्रेम कहानियां ये सुनाती है।

अपनी प्रेम कहानियां लता जी आपको सुनाए। फिल्म मेरा गांव मेरा देश, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जो चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत किया जा रहा है। जो लोग चून के एमिटर पर, आपका हृदय से स्वागत है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जो दिन हाक शहर से प्रसारित हो रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म होली आई रे में से निकाले नेगेटिव सेफ इंतख का ये गीत है मैथ मुकेश। इस तरह से

माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमने प्लेयर में तीन गाने रखे हैं, जी हाँ तीन गाने, चार गाने रखे हैं। अब सोचता ये हूँ कहाँ शुरू करूँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आप सुनिए, फिल्म दो बदन में से है।

ये पखेरू प्यार के संसार के, अब कभी मिलकर बिछे

नैनों में बदरा छाए, ये गीत हमने निकाले हैं मदन मोहन के साज पर मेरा साया में से, और हमने पेश की हो फरफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं, ये सुबह के लाली के जिक्र कर रहा है। अब ये मुझे पता नहीं है कि सुबह ये गीत चलाना चाहिए या शाम को या दोपहर को या रात को, ये पता नहीं है, क्योंकि ये गीत मेरे दिमाग से निकल गया। इसका धुन कैसे है, बात कैसी है, आशा जी एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना रहे हैं। फिल्म है अभी तो ये अभी तो जीले में से निकाल रहे हैं निकति सीफ न सीफ तक। चलो सुनते हैं, चलो एक बार मैं भी बेवक्त के शहनाई बजा दूँ।

काली है सवेरे वाली फिल्म है अभी तो जी लें। नेगती सैफन सैफन तक आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। दरअसल में ये गीत हमने पहली बार चलाया, पता नहीं धुप्पल में कैसे मिल गया। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है जगमोहन बख्शी और सपन सेन गुप्ता। मुझे इस फिल्म के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब हमने सुन लिए, देख लिए और जान लिए, तब ढूंढेंगे ये फिल्म कि कैसा फिल्म है ये। अभी तो जी लेने नेगती सैफन सैफन तक ये गीत हम आपको सुनाए ओ प्रोफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

है इसी में प्यार की आबरू, मदन मोहन के साज पर लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। मैं भी एक बेगीत बैठ के बहुत दिनों बाद सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इतने खो गए थे इस गीत में कि हमने भूल गए ये गीत भी चून करने को कि ये गीत कैसा है। चलिए हम आपको सुनाते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसा गीत है।

बस महालक्ष्मी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत उर्फ़ाउन हिंदुस्तानी रेडियो है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं एक गीत आयशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म हर एक कांच की चूड़ियाँ में से निकाल कर हम ये गीत आपको सुना रहे हैं। और देखा जाए हाँ, ये फिल्म में विश्वजीत ने काम किया है और नैना शाहू किशोर शाहू की सुपुत्री यानी बेटी है। तो आप ये सोचोगे ये नैना शाहू कौन है और किशोर शाहू कौन है। किशोर शाहू प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, लेकिन किशोर शाहू ने फिल्म गाइड में वो पति का रोल किया है वहीदा रहमान का। वहीदा रहमान ने पति का रोल जो किया है किशोर शाहू, वही किशोर शाहू उनकी बेटी है ये। तो चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं इस तरह से।

0: पंछी रे वो पंछी, रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाए हैं और फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ में से निकाल कर हमने चलाए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं लिखा है लेकिन साथ से पता चलता है कि शंकर जयकिशन के साथ पर हम ये गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है, ये धमाकेदार ये है।
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए
0: क्या
1: थोड़ी

क्या बात है, ये शानदार प्यारा दुआ हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए प्लेयर में हमने गीत रखे हैं। कहाँ गया? जी हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये मिल गया। चलिए देखते हैं, मैथ मुकेश, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, सोनिक ओमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाला है इस तरह से।

0: ये किया किया रे दुनिया वाले फिल्म में से हम निकाले, 1969 का ये फिल्म है और हमने पेश की वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत, जी हाँ, सोनी कोमी के साज पर फिल्म ब्यूटी में से निकाले हैं। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलो प्रेम पुजारी की ओर बढ़ते हैं। प्रेम पुजारी में देवानंद का कास्ट है और वहीदा रहमान, तो ये प्यारा गीत हम आपको सुना दें। बहुत ज़बरदस्त गीत है, कौन संग्रह ये गीत नहीं गाया है इस तरह से।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

जी लता जी, आपको सुनाए रंगीला रे फिल्म प्रेम पुजारी में से हमने ये गीत निकाले हैं। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। हाँ, फिल्म वो दिन याद करो, फिल्म वो दिन याद करो में से निकाल रहे हैं द मैन विद गोल्डन वॉइस और लता जी।

मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगे है जवानियाँ। ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाहौन हिंदुस्तानी। आप चुन है फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए मैं चला रहा हूँ, आपको चला भी नहीं रहा सुना भी रहा हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर फिल्म अनीता में से निकाल कर। ये एक डरावनी फिल्म थी, लेकिन इतना डरावनी नहीं थी, बहरहाल थोड़ी बहुत डरावनी थी। फिल्म अनीता में से निकाल कर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ।

ना बाबा ना बाबा पिछवारे बुढ़ा खांसता लता जी आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म अनीता, फिल्म अनीता में से निकाल कर हमने चलाए हैं। और अनीता जी के बाद नहीं, फिल्म अनीता जी के बाद चलो हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार, सुनाया गया फाउ हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है रवि साहब की आवाज़ में जाना पहचाना गीत, जानी पहचानी आवाज़, जानी पहचानी संगीत है।

वाह क्या बात है, ये छेड़खानी वाली गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलते हैं, मैथिली में कैच द हार्ट ऑफ मिलियंस आशा जी के साथ एक बार मुस्कुरा दो निक दी तुम सी में। तो 1972 का ये फिल्म, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस फिल्म का म्यूजिक दिया गया है ओपन नैयर के जरिए, जरा देखो तो सही है। जी हाँ सही है।

0: चमके,
1: हर किस्मत चमके, किस्मत चमके।
0: आग में तप कर सोना, अरे और भी दमके।

दिल पर जाने दिल तोड़ तोड़ आशा जियो मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में से निकाल कर नहीं तुम सही फन तक 1972 का ये गीत हमने पेश किया ओपी के साज पर। अगर ओपी ही से हम चल रहे हैं तो लीजिए एक बार फिर ओपी नैयर के साज पर इस बार आशा जी ये धमाकेदार गीत फिल्म हांगकांग।

1962 फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं और ये गीत चला ओपन एयर के साज पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं प्लेयर में हमने ये गीत रखे हैं तो क्या ख्याल है। इस तरह से मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

0: लता जी और माई टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

दोस्तों, आज भी हमें कुछ अच्छा करने का एक मौका मिलता है। जैसे एक अच्छी बात, थोड़ी मदद, थोड़ा सब्र, ये वो काम है मित्रों जो दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। तो आज बाहर निकलें और किसी की मुस्कान की वजह बने मित्रों, किसी की मुस्कान की वजह बने। बेस्ट मैंसन ओक फंदा क्रैक वो वेरन कांस ओम इट्स खुद्स तो दून जो अस एन फ्रेंडलिक वर्ड एन बीच हेल्प एन बीच खुदेल्ड दिट जैन द दादन दी द वेरल मूयर माकन। बेस्ट मैंसन लातन वो एरोप ऐट खान एन फंदा de reden zijn voor iemands glimlach. De reden zijn voor iemands glimlach. Beste mensen, zal dat niet mooi zijn?

साथियों, अगर भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं तो वो हमारा विश्वास मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। मित्रों, अगर वो देर करते हैं तो वो हमारा सब्र, वो हमारा खदल बढ़ाते हैं, और अगर वो जवाब नहीं देते तो वो जानते हैं कि हम उसे संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। मित्रों, als God ons gebed verhoort, beste mensen, versterkt hij ons geloof. Als hij het uitstelt, versterkt hij ons geduld. En als hij niet antwoordt, weet hij dat wij het aankunnen.

भाई बहनों, नदी जब किनारा छोड़ देती है, ध्यान करना, नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है, मित्रों तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में, बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में मित्रों, तो जिंदगी की रास्तों को मोड़ देती हैं, जीवन ही अलग हो जाती है मित्रों। इसलिए किसी के दिल को दुखाओ मत, ना ठीक बात है। बेस्ट मैंसन वनीर एन रिवीर बैतन जैन उफर स्त्री कान है जेल्फ द रोत्सन इन द रिवीर फॉर ब्रेजलन सेल्फ एन क्लेन क्वेस्टी कान अल्स देस ओन बहांद ब्लेफ De loop van een leven veranderen. Daarom moet men niet kwaadwillig zijn. Blijf altijd lief. Blijf altijd aardig tegenover mensen. Dat is het beste wat je kan doen, lieve mensen.

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, परमात्मा कहते हैं, भगवान बोलत है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए प्रार्थना करो, जब जिंदगी शानदार हो प्रार्थना करो, और जब जिंदगी में घबराहट हो तो प्रार्थना करो। भगवान बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा राह प्रदर्शक यानी गाइड एक हिस्स बनकर रहूंगा। ये भगवान बोलते हैं मित्रों, बेस्ट मैंसन खोत जेख अल्स हैट लेफन मुइलक वर्ड बेत अल्स हैट लेफन गवेल्दिग इस बेत Als het leven verwarrend is, bid. En ik zal altijd je gids zijn. Dat zegt de Heer, beste mensen. Hoe mooi is dit niet, hè? Maar wij moeten wel vertrouwen in hebben.

साथियों, फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है। ध्यान कीजिए, सिर्फ हवा की दिशाएं में फैलती हैं, लेकिन एक इंसान की अच्छाई, आपकी अच्छाई या बुराई सभी दिशाओं में फैलती है मित्रों, सभी दिशाओं में। तो आप जानिए कि क्या कर्म कर रहे हैं, कौन सी कर्म कर रहे हैं मित्रों। द ह्योर फन ब्लूमन फर स्प्रेड जिख स्लेक्स इन द रिक्टिंग फन द विंड बेस्ट मैंसन इन द रिक्टिंग फन द विंड मार द खुद है फन एन मैंस फर स्प्रेड जिख इन अल रिक्टिंग दिस वट डू यू खुद वट डू यू नीट खुद Dat noemen wij de karma, die verspreidt zich in alle richtingen, beste mensen. Ik shant man, sabhi chunautiyon ke khilaaf hamara antim hathiyar hai. Isiliye hamesha shant aur tanav mukt rahe, beste mensen. An kalm geest is onze ultieme wapen, is onze ultieme wapen tegen alle uitdagingen. Blijf dus altijd kalm en ontspannen, vooral ontspannen. Dosto, un logon par shabdon ko barbaad na karein jo aapki chuppi ke layak hain. Kabhi kabhi सबसे शक्तिशाली बात कुछ भी ना कहना होता है। चुप रहो, लीफ मैंसन फर्स्पिल खेन वोर्दन अन मैंसन दी ऑफ स्टिल्त फर्दीनन सोम इस क्रख्त ओम हेलमाल निच्स सेखन बेस्ट मैंसन। देंक हियर इज ओवर नाउ।

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो अपनी जेब में तीन शब्द रखें, तीन शब्द रखें, प्रयास, सत्य और भरोसा। प्रयास बेहतर भविष्य के लिए, सत्य आपके काम में, भरोसा ईश्वर में। मित्रों, सत्य आपके काम में और भरोसा ईश्वर में, फिर सफलता आपके चरणों में होगी। बेस्ट मैनसन अल्श यदाख बखिन हाउ दन द्री वोर्दन इन ये जक प्रोबेर वार है एन फरत्रावन प्रोबेर फॉर बेटर टुकोमस्त वार है इन ये वैरक एन फरत्राव ऑफ ये खोत Dan ligt succes aan je voeten, beste mensen, aan je voeten. Saathiyon, hasna jaruri hai, sirf isliye nahi ki ye hame khush karti hai, balki iske asal swast gezondheid ke liye, mitron, gezondheid ke liye bhi hai, kyunki yeh आपके शरीर और आत्मा को ठीक करती है। हंसना, जरूर हंसना, और उतरेतर वाला हंसना नहीं, दिल खोल के प्रेम से हंसो मित्रों। लखन इस बलंगरेक बेस्ट मैनसन नित अलेन ओमदात हैत ओंस खुलिक माग मार ओग ओमदात हैत दात वैरकलक खजोंत हैत फोर देलन हेफ्ट Het geneest lichaam en ziel. Het geneest lichaam en ziel, beste mensen. Onthoud wat ik gezegd heb.

किसी ग्राम में भगवान के एक भक्त रहते थे। वे पूर्ण संतोषी थे। भगवान के दर्शनों की सेवा उन्हें कोई इच्छा न थी। स्वर्गलोक में भगवान विष्णु ने

प्रभु से पूछिएगा कब दर्शन होंगे। नारद जी ने लौटकर सब कह सुनाया। भगवान विष्णु बोले, वापस उस भक्त के पास जाओ और कहो, तुम्हें 10,000 वर्ष बाद दर्शन होंगे। भक्त ये सुनकर हर्षोल्लास से नाचने लगा। भक्त को प्रसन्न देखकर नारद जी ने फिर कहा, तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम्हें 10,000 साल के बाद दर्शन होंगे। आनंद विभोर भक्त वैसे ही खुशी में नाचते हुए बोला, दर्शन तो होंगे ना। थोड़ी ही देर में नारद जी क्या देखते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु उस भक्त के साथ नाच रहे हैं। भगवान, कहां 10,000 वर्ष, कहां एक पल? ऐसा ही करना था तो मुझे झूठा क्यों बनवाया? भगवान बोले, मैं इसके भक्ति भाव और संतोष से प्रसन्न हो गया हूं। संतोष से हरि दर्शन का बखान कबीर जी ने भी इन शब्दों में किया है, साहिब मिले सबूरी में।

राधा कृष्ण के एक मंदिर में पुजारी के साथ संतु नामक एक सेवक था। किसी कार्यवश पुजारी को 3 दिन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। संतु को 3 दिन की भोजन सामग्री देकर पुजारी ने कहा, देखो संतु, भगवान को भोग लगाए बिना तुम भोजन नहीं करना। हाँ, संतु बोला, आप निश्चिंत होकर जाइए, ऐसा ही होगा। समय बीतता गया, संतु भूख से बेहाल था, परंतु भगवान थे कि भोजन नहीं कर रहे थे। संतु गिड़गिड़ाया, विनती की, परंतु सब बेकार। देखो प्रभु, तुम नहीं खाओगे तो मैं प्राण दे दूंगा, परंतु पुजारी जी का आदेश नहीं ठुकराऊंगा। संतु का भोलापन, निष्कपट प्रेम और श्रद्धा देखकर पत्थर से भगवान प्रकट हुए और राजा के संग भोजन किया। इस तरह भला भोजन सामग्री 3 दिन तक कैसे चलती। संतु आसपास से भोजन जुटाता और स्वयं भूखा रहता। जैसे ही पुजारी लौटे तो संतु उन पर टूट पड़ा, मैं तो भूखा मर गया, एक आदमी का भोजन 3 दिन कैसे चलता। पुजारी जी बोले, मैंने तो भोग लगाने भर के लिए कहा था, तुम कैसे भूखे रह गए। राधा कृष्ण दोनों प्रेम पूर्वक भोजन करते थे। पुजारी जी कहने लगे, आज मैं देखता हूं, संतु भोजन रखे रखे थक गया, परंतु भगवान न प्रकटे। जब भूखे संतु ने फिर प्राण देने की चेतावनी दी, तभी संतु को तत्व ज्ञान हुआ। हे प्रभु, मेरे जैसे मूर्ख को तुमने दर्शन दिए, पुजारी जी को भी दर्शन दो। और राधा कृष्ण प्रकट हो गए। प्रेम दीवानी मीरा की भक्ति भी ऐसी ही थी, रट थी तो बस प्रभु आवन की।

रोजा अपने साम्राज्य के सिद्ध संत को हर दिन बुलवाते और वो टाल जाते। बहुत आग्रह करने पर संत केवल महल के द्वार तक पधारे। अंदर न आने का कारण बताया, महल के वातावरण पर मंडराती वासना, अहंकार और लोभ की काली छाया। संत की बात मान राजा चल पड़ा उनके साथ आश्रम की ओर। रास्ते में चमड़े की ऐसी दुर्गंध आई कि राजा बेचैन हो गया। बोला, ये चमार लोग इस दुर्गंध में कैसे सांस लेते हैं? संत ने कहा, ये इनके जीवन का अंग बन चुकी है। जैसे तुम्हें अपने महल का वातावरण वासना और लोभ से दूषित नहीं लगता क्योंकि तुमने उन्हें इतना अपना लिया है। राजा की आंखें खुल गईं और वो भोग विलास और धन दौलत का मोह त्याग कर सत्संग, साधु संग और श्रद्धा भक्ति में लीन हो गया। कबीरदास का विश्वास है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है नित राम सुमिरन।

उपासना के बल पर प्रभु कृष्ण के दर्शन अनेक संत महात्माओं ने प्राप्त किए हैं, परंतु मीराबाई का स्थान सबसे ऊंचा है। श्री कृष्ण के लिए मीरा के हृदय में इतना अनुराग, इतनी भक्ति थी कि लोग उसे पगली समझने लगे थे। सास ने इस कुलतारिणी को कुलनाशी कहा। अपने इष्ट की पूजा में, इष्ट के श्रृंगार में मीरा को घंटों लग जाते। भावों में वो कृष्ण के साथ ही उठती बैठती खेलती, सोते जागते बस कृष्ण ही कृष्ण। एक बार सपने में मीरा कृष्ण को माखन खिला रही थी। सास ने कर्कश स्वर में पुकारा तो आंख खुल गई। देखा, हाथ में सचमुच माखन था। प्रेम में डूबी मीरा की भक्ति अछूती थी। विष का प्याला पीकर भी अपने सांवरे के रंग में रंगी मीरा मगन हो नाची थी।

श्वेत मुनि की आयु समाप्त होने पर थी। अपनी आयु की समाप्ति की बात जानकर वे मृत्युंजय भगवान शिव की उपासना आराधना करने की तैयारी में लग गए। उन्होंने अपने आश्रम में भगवान शिव की मूर्ति के रूप में एक पत्थर का शिवलिंग स्थापित किया और इस पाषाण शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र और रुद्रध्याय का पाठ करना शुरू किया। उनके मन में पूरा विश्वास था कि महामृत्युंजय उनकी मृत्यु से रक्षा अवश्य करेंगे। जिस दिन श्वेत मुनि का अंतिम दिन था, उस दिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र और रुद्रध्याय का पाठ समाप्त कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना शुरू किया। ठीक इसी समय काले वस्त्र में एक भयंकर विकराल आकृति को उन्होंने अपने पास खड़ा देखा। श्वेत मुनि समझ गए कि ये मृत्यु के देवता यम के दूत हैं। उन्होंने ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर उस यमदूत से कहा, ऐ दुष्ट, तुमने मेरे आश्रम को अपवित्र करने का दुस्साहस किस प्रकार किया? तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि ये आश्रम भगवान शिव की कृपा से अभय है। उस यमदूत ने उत्तर दिया, मैं आपको यमलोक ले जाने आया हूं। जिस पत्थर के शिवलिंग की पूजा आप कर रहे हैं वो निश्चेतन, जड़, निष्प्राण और शक्तिहीन है। इस जड़ शिवलिंग में भगवान शिव की कल्पना करना और अपनी रक्षा का आधार मानना आपकी महान भूल है। और यमदूत ने इतना कहकर अपना मृत्युपाश श्वेत मुनि का प्राण हरने के लिए फेंका। श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपनी बाहों में भरकर उस यमदूत की भर्त्सना करते हुए कहा, धिक्कार है जो तुम इस शिवलिंग को निष्प्राण, अचेतन कहते हो। श्वेत मुनि की बातों को अनसुना करते हुए यमदूत ने श्वेत मुनि के प्राण को यमपाश में बांधना चाहा। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, ठहरो, श्वेत मुनि की बातें सच हैं। मैं विश्वास के अधीन ही प्रकट होता हूं। और इसी ध्वनि के साथ भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने श्वेत मुनि को चिरायु होने का वरदान दिया और यमदूत को वापस भेज दिया। संत कबीर ने भी इसी विश्वास को दोहराया है।

सूरदास कृष्ण नाम के जप और कृष्ण के ध्यान में मग्न एक सूखे कुएं में गिर गए और 7 दिन तक उसी कुएं में कृष्ण का भजन करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उस कुएं से उन्हें स्वयं निकाला था, परंतु अंधे होने के कारण वे भगवान कृष्ण को देख नहीं सके। इसका उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी मन की आंखों की विकलता द्वारा पश्चाताप को अपने भजन में व्यक्त करते हुए कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के बिना मैं काशी जाकर शरीर त्याग दूंगा। सूरदास की विकलता को देख भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और सूरदास की आंखें भी ठीक हो गईं तथा उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया। भगवान कृष्ण ने सूरदास से वरदान मांगने के लिए कहा। सूरदास ने कृष्ण से वर मांगा, हे कृष्ण, हे दया के सागर, मैंने जिन आंखों से आपको देखा है उन आंखों से अब मैं संसार नहीं देखना चाहता, ताकि आपकी मोहनी मूर्ति सदा ही मेरी आंखों में बसी रहे। भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहा और सूर की असीम भक्ति को देखकर उनकी भी आंखें तर हो गईं। आश्चर्य नहीं कि भक्त सूरदास की कृष्ण भक्ति सारे संसार में प्रसिद्ध है।

केशवाचार्य ने अपने परम सिद्ध गुरु से पूछा, गुरुदेव मुझे प्रभु दर्शन कैसे और कब होंगे? प्रश्न का उत्तर दिए बिना गुरु ने शिष्य को अपने पीछे आने के लिए कहा। रास्ते में अचानक तूफानी आंधी आई और दोनों की आंखें धूल से भर गईं। कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। आंखों से धूल कण निकालने के लिए शिष्य बहुत व्याकुल हो उठा, यहां तक कि आंसू निकल आए। आंखें साफ हुई तो सब कुछ दिखने लगा। नदी में स्नान के लिए उतरे तो गुरु ने शिष्य को अपने बलिष्ठ हाथों से पानी में डुबा कर रखा, यहां तक कि उसका दम घुटने लगा। शिष्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और वापस पानी से बाहर आया। अपने गुरु पर वो बहुत क्रोधित हुआ, परंतु गुरु ने समझाया, आंखों पर मोह माया का पर्दा पड़ जाने से जैसे कुछ दिखाई नहीं देता, उस समय इस बंधन से छूटने के लिए पूरी शक्ति, संयम और त्याग का सहारा लेकर ही इंसान इस भंवर से ऊपर उठ सकता है। ब्रह्मानंद जी ने भी कहा है, सांसारिक भावनाओं में बहकर ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, मोह माया त्याग कर ही ईश्वर को पाया जा सकता है।

0: बाबा उसले मलाई हजुरले जस्तै सधैं खुशी राख्छ धेरै माया
1: गर्छ फर्स्ट एवर नेपाली डुएट्स आपने सुने आपके लिए हमने चला दी और वो भी पवनदीप राजन और अरुणिता कांजलाल की आवाज में

लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है, लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है, और प्यार की ज़रूरत, हाँ जी प्यार की ज़रूरत दिल में होती है। आपके लिए धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता

धीरे रफ्तार रफ्तार सुंदर अति सुंदर आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, फूल तो फूल थे, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू।

दिल है धड़कनों की कसम वाकी में कि बेताब दिल है, और ये मौसम भी कहते हैं कि बेताब दिल है, आप कहाँ हो धड़कनों की कसम। फिर मिलेंगे, फिल्म का नाम है श्रिया घोषाल और सोनू निगम के आवाज में आपने सुने। Friendship is heel bijzonder en speciaal. Friendship is heel bijzonder en speciaal. Kopen kun je het echter niet. Friendship kun je echter niet kopen. Maar de juiste personen zullen er zijn. In tijden van vreugde, maar ook bij verdriet. Ja, dat is wel zeer zeker. मोहब्बत खुद बताती है, कहते हैं कि मोहब्बत खुद बताती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसको आँखों में रखना है और किसे दिल में बसाना है।

सनम, वाकई में आपके सिवा और कोई नहीं है, एक तू ही है सनम। रास दिल का, रास दिल का दिल में छुपाते हैं वो। हाँ सुनो वालो, रास दिल का दिल में छुपाते हैं वो, सामने आते ही नजर झुकाते हैं।

सदा मुस्कुराते रहो, तुम सदा मुस्कुराते रहो, आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, खुशहाल में रहो। जहाँ पे जैसे भी आप सुनते हैं, जिस देश में आप सुनते हो, आपको भी बहुत से खुशियाँ खुश नसीबियाँ पेश किया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए से। तुम सदा मुस्कुराते रहो, तुम सदा मुस्कुराते रहो, ये तुम्हारा ही है। तुम सदा मुस्कुराते रहो, ये तमन्ना है हमारी, ये तमन्ना है हमारी, हर दुआ हर प्रार्थना में, हर दुआ प्रार्थना में मांगी है बस खुशियां तुम्हारी। बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसा रिश्ता, बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसे रिश्ते, जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो।

0: अंतम मुझसे दूर है, जाने क्यों इतने मजबूर है। आप जहां से जैसे भी सुनते हैं, सुनने वालों आपके बहुत सारे प्यार पेश किया जाता है। अभी का फान हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ऐसे कई अन्य देश है जहां पे अभी सुबह होने को जा रही है, तो ये बेस्ट रोमांटिक मूड में आप हो तो आपके भी बहुत सारे लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट पेश है। रिश्ता का कोई जाति धर्म नहीं होता, ना ना, रिश्ता का कोई जाति और धर्म नहीं होता। जहाँ मोहब्बत है, जहाँ जिससे मोहब्बत हो जाता है, बस रिश्ता वहीं से शुरू हो जाता है। कि सच्चा प्यार करने वाले सच्चे प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, सच्चे प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, लेकिन फिक्र बहुत करते हैं।
1: तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

राज और संगीत हिमेश रेशमिया और सुनाए आपको सवाई भात मौजूद है। बारिश के बूंदे में कभी भीग लिया करो, बारिश के बूंदे में कभी भीग लिया करो, काम को छोड़कर मस्ती में जी लिया करो। हाँ जी, काम को थोड़ा से छोड़कर मस्ती में जी लिया करो। कपड़े गीले होते हैं, कपड़े गीले होते हैं तो बस होने दो, ऐसे मौसम में एक दूजे को प्यार किया करो।

चले आए, इस मौसम की मोहब्बत कुछ इस कदर है, इस मौसम की मोहब्बत कुछ इस कदर है कि वो उधर धड़कता है और इधर ये सुनने वाले तड़पते हैं।

जैसे जरूरी है दिन के बाद रात होना, जैसे जरूरी है दिन के बाद रात होना, वैसे ही मेरे लिए खुशी का मतलब है बस आपका साथ होना।

सुरीनामी लोबी सुनाई हमको अंदर रगी डांस हॉल के आवाज में हमने यहाँ सुने और एक सुंदर सा गीत केती कोती के बारे में।

echt lobby in deze zware tijden en je blijft van iemand houden, dat is top en is top. कहते हैं कि जब तक मेकअप करना है तब तक मेकअप कर लो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों भी मेकअप करता है ये ना मत सोचो। हाँ कि जब तक मेकअप करना है कर लो, जब तक उम्र है मेकअप करने के लिए कर ले, नहीं तो एक समय ऐसे आ जाएगा जहाँ पर सिर्फ चेकअप करना पड़ेगा, तब मेकअप का खेल बिगड़ जाएगा। सुनेंगे हम अभी का फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से।

कमी नहीं यारों की, बच के रहना दुनिया से, मोटिवेशन रैप सॉन्ग रियलिटी ऑफ फेक फ्रेंड्स। जिंदगी, जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है मेरे दोस्त। हाँ, आप सोचेंगे क्या राज है जिंदगी, तो डोंट वरी, मैं बता रही हूँ ना आपको कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि ये रुकती कभी नहीं, इसलिए हर पल जी लो मेरे दोस्त, कल का भरोसा कभी नहीं। कल तो दूर है, ये पल का भरोसा कभी नहीं, तो छोड़ो कल की बातें, जो आज है अभी में जी लो। वक्त के साथ सब बदल जाता है, वक्त के साथ सब बदल गया। जी हाँ, ये प्रकृति की हकीकत है कि वक्त के साथ सब बदल गया, जो अपना था वो पराया हो गया। जिंदगी, जिंदगी की इस भीड़ में आज काफी इंसान अकेला हो गया। बातों

ये भी एक सुंदर सा लाइन है कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है। जिंदगी का सच यही है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है।

हाँ, हर समय के, हर पल के, हर चीज के यहाँ एक संगीत, उसे संगीत के पोइसी में उतार दिया जाता है, जो भी हो।

ये सांगर का नाम मैं नहीं दिखती हूँ तो नहीं बता सकती हूँ, पर ये गीत आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैं चला दी आपके लिए, ताकि आप भी कैनस कर लो कि ये सब गीत भी है। कभी जीत तो कभी हार मिलेगी ये तो है ना, कभी जीत तो कभी हार मिलेगी, हर मोड़ पे एक पुकार मिलेगी, जो हिम्मत नहीं हारते कभी। हाँ वो आप भी है मेरे दोस्त जो आप सुन रहे हैं, हाँ आप हिम्मत हारने वाले नहीं है, जो हिम्मत नहीं हारते कभी, उन्हीं की उन्हें ही मंजिल पर, उन्हें ही मंजिल बार बार मिलेगी। जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, हर गम को भुला कर जी लो ना, क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो, आज को खोल के जी लो मेरे।

रेमोंड रामनारायणी के आवाज में सुने हम समडे आई सी यू अगेन। वक्त वक्त के मोड़ पे ऐसा वक्त के मोड़ पर ऐसा वक्त आया है, हाँ सुनने वालों, कि वक्त के मोड़ पर ऐसा वक्त आया है, जख्म दिल का जुबां पर आया है। ओहो, ना रोते थे हम कांटों के चुभने पर, ना रोते थे हम कांटों के चुभने पर आज, हाँ आज, ना जाने क्यों फूलों की खुशबू से रोना

भी अपना क्यों ना हो मेरे दोस्त, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, जब मन भर जाता है तो सब बदल जाता है।

0: Nederland zeggen wij, in Nederland zeggen wij, hoe gaat het? In Germany they say, danke. फ्रांस में कहते हैं मर्सी। हाँ हाँ, ऐसे सभी देश का जो है ना भाषा, वही इस गीत में धर देश है, बता देश है। इन चीना वी से चीची। इंडिया में देश से धन्यवाद। और पाकिस्तान में वी से शुक्रिया। ऐसे है कई अन्य देश का बता दी है कि हु खातत वहाँ पे सभी भाषा में। दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं है, दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं, मन से जो भी चाहा वो मिला नहीं। बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, वक्त बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, अंधेरे में दिया मिला, अंधेरे में दिया मिला पर वो भी जला नहीं।
1: इंसानों के साथ खेलते हैं, वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे। जो खेल आप अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ खेलते हैं, वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। आप कितने भी होशियार हों, कितने भी चालाक हों, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है वो आपसे भी ज्यादा होशियार है। हर कर्म का हिसाब जरूर करेगा। दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म का हर उधार एक दिन चुकाना ही पड़ता है।

love for you goes on and on. मुझ में लाख बुराइयां होगी मगर मुझ में लाख

झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे, सच बोलकर कितने लोग गंवा दिया मैंने। दर्द और जिंदगी ऐसा साथ थे जैसे दोनों ने आखिरी सांस तक ही साथ निभाए, जैसे दोनों ने आखिरी सांस तक ही साथ निभाना हो।

फिल्म धुरंधर से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

पीएस रावत, नहीं नहीं नहीं, म्यूजिक दिया है पीएस रावत और संगीत का लिखने वाला है शैतान सिंह। शैतान सिंह ये गीत लायरिक्स जो लिखे हैं और गायक है प्रकाश रावत, प्रकाश रावत जो रावर, जी हाँ। दिल में

अच्छा लगता भी ऐसा नया संगीत सुनने के लिए, और ये सब सेलेक्ट किया है आपके लिए और पेश हो रहा है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। सुनने को
1: सारेगामा कारवां द परफेक्ट गिफ्ट
0: फॉर, सुनने के लिए बहुत उकसत रही आप भी, आपने फोन करके और कहा तो यहाँ से आपके लिए भी

धुरंधर, फिल्म धुरंधर से रणवीर इसमें अपना कला दिखाए हैं। इस बार सुनेंगे सैयारा।

का और सिंगर है अरिजीत सिंह। ये भी एक बहुत सुंदर फिल्म है, आप नहीं देखे होंगे तो जरूर से देखना। कभी काल के ये सब पिक्चर जो है बियोस्कोप में भी इसको रिलीज किया जाता है यहाँ हॉलैंड में, तो जरूर से वक्त बनाकर याद कर देखना। बड़े पर्दे पर फिल्म देखना, पिक्चर देखना कुछ अलग है, और घर पर बैठकर देखना ये भी एक खास है।

इस बार है ये आंखें गीत का बोल है।

ये आंखें गाकर सुना दी हमको शाहिद मालिया। शाहिद मालिया के आवाज़ में ये सुंदर गीत हमने श्रवण की है और गीत का लेखक जो है शिल्पा अग्रवाल ये लायरिक्स जो लिखे हैं भी सुंदर लगता है सुनने के लिए ये नए गाने जो हैं। इसमें अपना रंग है, अपना चमक है। समय रुकने वाला नहीं है, जो रुक जाओगे तो पछड़ जाओगे। अंतविकलिंग में पीछे रह जाओगे, पर समय तो जाएगा, तो वक्त के साथ चलना है, यही समझदारी है।

दूंगी हो माही रे। कलाकार इसमें है शाहरुख खान, ये आज के दौर के गीत और संगीत है। मेरे बन के रहना तू,

बन के रहना तू पेश किया गया। इस बार हम सुनेंगे अरिजीत सिंह जी की आवाज के, अरिजीत सिंह जी की आवाज में मुस्कुराने की वजह तुम ही हो।

0: फिल्म सिटी लाइट से, फिल्म सिटी लाइट से अरिजीत सिंह जी की आवाज में। मुस्कुराने की वजह तो आप ही है, कितनी अच्छी बात है ना।
1: कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात,
0: तेरी याद सताती है, फरमा रहे हैं अरिजीत सिंह जी।

कैसे कटे सजनी तेरे बिन, सजना तेरे बिन तेरी याद सतावे, अरिजीत सिंह जी के आवाज में। अरिजीत सिंह जी भी कितने शानदार गीत गाए हैं, दिल छू जाने वाले गीत।

दूर की आवाज़, दूर की आवाज़ आपके करीब और पहुंच आ गए हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों,

मेरा भी दिल बोले, मेरा दिल भी दिल बोले कुकू कुकू। क्या मौसम है, क्या नजारा है, क्या हकीकत है। और यहाँ से आपको लेकर चलते हैं फिर से सुनने के लिए मुकेश जी की आवाज में।

के इस चांद माथुर जी और लता जी की आवाज में कि चांद तेरा मुखड़ा यहाँ से फरमा दी है। और कहते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और क्या कहते हैं जरूर से आपको बताएंगे। नदी का पानी मीठा होता है, नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देते रहते हैं। सागर का पानी खारा होता है, खारा यानी कि कड़वा नीमकी। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेते रहता है, हमेशा लेता रहता है। और नाले का पानी हमेशा गंदगी दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। यही हम अपने जिंदगी के साथ तुलना कर सकते हैं। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो कड़वे लगोगे, और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। यही है लगभग जिंदगी का। जिंदगी का तुलना आप ऐसे भी कर सकते हो। रिफियर वाटर इज सुद ओमदात वाटर ब्लाइफ गेवन एंड से वाटर इज साउथ ओमदात है आल्टाइट ब्लाइफ नेमन। Het afvoerwater ruikt altijd slecht. Dat weet u ook, omdat het gestopt is. Dit is het leven. Als je blijft geven, mijn lieve mensen, word je door iedereen, bij iedereen geliefd. Als je blijft nemen, zal het zout smaken. En als je stopt, lijk je voor iedereen nutteloos. तो आप सोचो कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो और क्या कर रहे हो। सुख अम्बलांस अरेन।

मेरा दिल न तोड़ो, राजा बाबू से निकाल दिया गया है। आहा, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है मेरे दोस्त। हाँ, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता है।

मैं चुप रहूंगी। हाँ हाँ, मैं तो चुप नहीं रहूंगी, बल्कि फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। ये सुंदर सा दुएत आपने सुने लता और मोहम्मद रफी जी से। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं चुप रहूंगी फिल्म का नाम जैसे हमने कही है, सुनील दत्त और मीना कुमारी का इसमें अपना कला दिखाए। मौका मिले तो जरूर से समय निकालकर और देख लेना ये सुंदर सा फिल्म। द बेस्ट लेयर मेस्टर इन एट लीफन इज द टाइट मैन लिफमेंस। द बेस्ट लेयर मेस्टर इन एट लीफन इज द टाइट। वो द टाइट ओंस लेयर कान निमांत ओंस लेरन।

जी मेरे प्यारे सुनने वालों, कि तुझे पहचान लिया है और आपको अपना मान लिया है, कितनी सुंदर बयान है आपके लिए पेश किया गया। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतना भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे कर्म, जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। आप समझ गए ना मेरे दोस्त।

0: उमर खयाम के सगे क्यों लुटिया डुबोने वाला है? अगर पुलिस आ गई तो सीधे जेल जाएंगे।
1: पुलिस जहांगीर का क्या बिगाड़ सकती है? अब्बा हुजूर अकबर आजम से कहकर इन पुलिस वालों की धज्जियां उड़वा दूंगा मलिका आलम।

0: जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को
1: जानती हो मैं कौन हूँ?
2: जानती मैं दीवानी क्यों तुम दीवानी?
1: हर रोमियो
3: दीवाना
1: हुआ करता है मेरी जूलियट। हाँ जूलियट और मैं रोमियो। तो देखो तुम बालकनी में खड़ी हो और मैं नीचे गा रहा हूँ।

0: हमें पकड़ लिया, जाने मिस्टर और लियो पैसे को पकड़ लिया। बड़ा बदतमीज है रोम वाले।
1: रोम वाले नहीं, हिंदुस्तानी जेल वाले।
0: हिंदुस्तानी जेल वालों ने मिस्टर और सारी दुनिया की हसीन तरीन औरत लियो पैसे को पकड़ लिया।

सोचो, जहाँ तू है वहाँ पर चांदनी को फिर कौन पूछेगा। आओ प्यार करे, आओ प्यार करे तो पता चलेगा कि जहाँ आप है तो वहाँ पर चांदनी को कौन पूछेगा। फिल्म का नाम है मेरा दोस्त, फिल्म का नाम है आओ प्यार करे, मोहम्मद रफी जी की आवाज में रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए। आप ही का फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से पेश किया जाता है। वे इस नोइट बंक फोर है तुंकर द मान स्कैंट ओक्सनाक्स ऑब्स्टाकल सैन नित हेत एन द फन द रेस ऑब्स्टाकल्स सैन नित हेत एन द फन द रेस खदोल्त लेट tot een weg, geduld leidt tot een weg. Geen enkele moeite is verspild. आपने ठीक सुना कि geen enkele moeite is verspild. Elk stap wordt een ervaring. जी हाँ, elk stap wordt een ervaring. Falen is geen nederlaag. No. Falen is geen nederlaag. Een mens groeit door strijd. Een mens groeit door strijd.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Jab prachand grishma ki tapish dharti ko jhulsati hai, tab vaishakh ke is pavan maas mein ek aisi divya parampara ka aarambh hota hai, jo keval jal arpan nahi, balki saakshat bhagwan ki shital seva hai. Shaligram shila par aur tulsi maharani ke mastak par jal ki wo nirantar girti boonde, ये कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि भक्त के हृदय की वो तड़प है जो अपने आराध्य को शीतलता प्रदान करना चाहती है लोग एसी और कूलर में राहत ढूंढते हैं लेकिन एक वैष्णव की राहत केवल अपने ठाकुर जी को शीतल रखने में है सोचिए वो गंडकी नदी से प्रकट साक्षात नारायण शालिग्राम शिला जिन्हें नहलाने के लिए साक्षात गंगा भी ललायत रहती है और वो वृंदा जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है जब वैशाख की धूप अपनी चरम सीमा पर होती है तब एक छोटा सा मिट्टी का पात्र जिसमें से टप टप गिरती जल की बूंदे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को तृप्त करती हैं। ये परंपरा हमें सिखाती है कि सेवा के लिए स्वर्ण के सिंहासन नहीं बल्कि एक शुद्ध भाव और समर्पण की मटकी काफी है भक्ति के मार्ग पर पंचामृत से अभिषेक करना सरल है लेकिन 35 दिनों तक निरंतर उस एक एक बूंद का ध्यान रखना ही असली साधना है जलदान का ये व्रत सिद्ध करता है कि भगवान भूखे नहीं है वे तो केवल प्यासे हैं हमारे प्रेम के हमारी निष्ठा के जब तुलसी के बिरवे पर वो शीतल जल पड़ता है तो मानो पूरा जगत शांत हो जाता है ये जल की धारा नहीं ये तो जीव और भगवान के बीच बहने वाला वो प्रेम सेतु है जो जन्म जन्मांतर की त्रिपन को शांत कर देता है आज जब हम इस सेवा का संकल्प लेते हैं तो याद रहे कि ये केवल एक रस्म नहीं है ये हमारे अहंकार को गलाने और सेवा भाव को सींचने का अवसर है जिस घर में शालिग्राम और तुलसी पर जल की धारा बहती है वहां काल की परछाई कभी प्रवेश नहीं कर सकती तो आइए इस भीषण गर्मी में अपने भगवान को शीतल करें और बदले में अपने जीवन को भक्ति की शीतलता से भर दें धन्यवाद हरे कृष्णा
5: मैं ऐसे तीन लोगों की कभी इज्जत नहीं कर सकता नंबर एक जो खुद बदतमीज बात करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि मैं उनकी इज्जत करूं। नंबर दो, जो सच्चाई जाने बिना सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर दूसरे को गलत ठहरा देते हैं।

कर्म कहो किस्मत कहो, कर्म कहो किस्मत कहो, चाहे एक कहो तकदीर, पहले बना प्रभावित पीछे बना शरीर। कर्म के गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा ही भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यही मरम। प्राण तेरे हाथ में ही प्राणी, तेरा अपना ही कर्म। सुनने वालों की सेवा में सादे सी नमस्कार, मेरी यादावर स्वराज्य फाहुन आप सुन रहे हो। ये कार्यक्रम है आज शनिवार का दिन 8 अगस्त तक के दोपहर के प्रोग्राम 6 मिनट व्यतीत हो चला है 12 बजकर। प्रथम में ये मैं आपसे बतला दूं कि प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे कुलेखा जो है शांता जी के जरिए से। यही मैं सोच रहा हूँ जिन अंदाज में अपना प्रोग्राम वो अपनी प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे थे और आपको पसंद आया हुआ होगा। फाहुन रेडियो है साथियों। प्रथम में जो बीमार लाचार है उनकी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मातमे घर पर सहन शक्ति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। कोई खुशी का दिन है, किसी का जन्मदिन है और ऐसा लोग पर्व ऐसा दिन है जो है आप मनाते हो, तो खुशी के दिन आपको बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं। जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हैं, आपके लंबी आयु लॉन्ग लाइफ इन खुद खसौते, लंबी आयु रहे, आपकी सेहत जो जाकर बनी रहे। यात्रा पे आप जा रहे हैं, खूब यात्रा हो और फकानसी खानर सब के नुख इन दिनों साथियों अगस्त महीना है और यहाँ इस मुल्क में रीत और रिवाज के और परंपरा जो है उसी के कारण जो है प्रकृति के नियम जो है वो अपना कार्य करता है। तो ये समय है जो इस देश में उस मुल्क में जो रहते हैं हमारी लोग और यहाँ के जन जनता इन दिनों बहुत पर और जाकर फकांसी पे जाते हैं ना अपनी छुट्टी के दिनों मनाने के लिए। तो आपके जो है यात्रा जो है शुभ हो और आप ये छुट्टी के दिन मनाए और पशु तो चले खुद अपना ख्याल रखना हमारे साथियों। शनिवार का दिन है, हेलो वीक वर्क बंदाख मतदान नकबूत का हाल मोबेर मोये दख पाहुन की फूल त्रिम में श्रीमान कुमार घिराओ भैया शिव चीतन प्रभु जी उनकी समस्त परिवार की तरफ से। मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ और अपने अंदाज में अपने शब्दों में ये प्रोग्राम आपके लिए जो यहाँ से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसमें कोई टूटिया हो जाए, गलत शब्द मेरे जुबान से निकल जाए, माफ़ कर देना दोस्तों, इंसान हूँ ना, जानबूझ के तो नहीं करूँगा। मेरा सौभाग्य है, मैं खुश हूँ कि आपके साथ इस पल इस घड़ी जिंदगी में आपके साथ मिल रहा है। जहाँ भी आप खुशहाल रहो, अपना कार्य करते चलो, वही कार्य जो आपको करना ही चाहिए ना, आपस में मिलके हंसी खुशी प्यार में बिताओ। सर्व भवन्तु सुखिना वासुदेव कुटुंबकम। हाँ साथियों, दुनिया में सृष्टि में सब हम पलवार है, किसी को दिल मत दुखाना, किसी के काम आना, यही इंसान जो है इंसान के नाता, इंसान के नाते जो है हमारी ये फर्ज बनता है, ये दुष्ट प्लेट वक्त क्यों बते कि नो ये मेड मेंस। तो अभी कुछ पल मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ साथियों। आज जबकि शनिवार है तो श्रीमान राजकुमार दौली मोहन सिंह नाम से आपके लिए जो प्रति शनिवार को जो आपके लिए प्रस्तुत करता है, तो आज वो करेंगे फिर से 2 और 3 के दरमियान राजकुमार रोली मोहन फन नाम मैथ इन्फॉर्मासी। भैया चांद रघुनाथ जी

कोई भी कार्य करवाना है और रेडियो के माध्यम से तरीके से कार्य हो सकता है तो वही हम करेंगे आपके लिए तार करो मेरे मन 973 2077. Een gezegende dag, hè?

0: हमारी साथियों, क्या सुने आप हनुमान चालीसा? कितना सत्य आपको प्राप्त हुआ यही आप आजमा सकते हो। इस वक्त जो है, अगर साथ आप दिए और आप सनातन धर्म को जो पालन करने वाला हो, तो यूं ही आप बताइए क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये। और हनुमान चालीसा आज सुबह यानी कि ये दोपहर ये प्रोग्राम में आप जो मेरे साथ मिलके गाए, ये एक बात यूं ही मैंने आपसे कह दूं, ये शनिवार के दोपहर के प्रोग्राम में और ये कार्यक्रम आपके लिए लाइव जो प्रस्तुत किया जाता है 8 तारीख 8 अक्टूबर 2012 2 और 3 के दरमियान, जैसे मैंने आपसे बताए। तो आप जो है जाकर कुछ घड़ी कुछ पल जो जाकर हमारी भैया रौली मोहन 2 और 3 के दरमियान में शून्य आपके समाचार आपके लिए प्रस्तुत करेगा। मुझे नींद नहीं आएगी तो आपसे ये अर्ज है ना, आपसे अर्ज यही करता हूँ कि मुझे नींद नहीं आएगी तो मुझे सुला पाऊंगा क्या? मैं ना समझ हूँ, हाँ मैं ना समझ हूँ बहुत, मुझे हर बार समझा पाऊंगा क्या? हाँ मुझे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है, पर मेरे गुस्से में प्यार ढूंढ पाऊंगे क्या? यही मेरा अर्ज है आपसे। ये घड़ी इस पर प्रोग्राम भी सुन रहे हमारी भैया चांद रघुना चांद डंकवेल फॉर वैटेंसी या खुद एक बहरे चांद, कभी कभी आ जाता हूँ जब अवसर मिलता है और जब मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ हमेशा मुझे मौका भी नहीं है ना भैया साहब। तो आप जानो कि आज के कार्यक्रम में आपके नाम दिए नंबर जो है, आपके परिवार, आपके धर्म पत्नी खीस जो है घर के लक्ष्मी अर्धांगिनी ने, और अभी से हैप्पी वीकेंड मैं आपको कहता हूँ, आपको नहीं हर एक सुनने वालों को एक शुभ वीकेंड। और इस वीकेंड के आज का दिन के और हमेशा के लिए शुभकामनाएं आपके लिए। आप जानते हो और कांवड़ यात्रा, कांवड़िया यात्रा जो भारत भूमि, भारत हमारी मातृभूमि जहाँ से हमारे बाप दादा आए थे वहाँ हो रहा है, और जाकर हर एक कोई जो इस पर्व में साथ देते हैं भाग लेते हैं, जाकर शिव शंकर भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें।
1: नीले गगन के तले धरती का प्यार पर,
0: हाँ तो भैया चांद रघुनाथ श्रीमती खीस इन दोनों के लिए,
1: नीले गगन के तले
0: इन दोनों के नाम से।

अपनी पत्नी के कदमों में, हाँ अपनी पत्नी के कदमों में जाकर भैया श्रीमान जो है चांद रघुनाथ स्पेशल फोर्स फ्रऊ और धांगनी घर की लक्ष्मी के नाम हमारी साथियों। और मैंने आपसे बतलाए कि जो भारत भूमि मातरा खास करके जो है ये भारत देश जो है जहाँ से हमारी बाप दादा आए हैं वहाँ पे और कांवड़ यात्रा चल रहा है बहुत ज़ोर शोर से लोग जो और जाकर और शिव शंकर भोलेनाथ के प्रार्थना कांवड़ चढ़ाने वाले हैं और यात्रा जो हो रहा है तो यात्रा सफल हो और उनकी मनोकामना जाकर शिव शंकर भोलेनाथ पूर्ण करें।

हमें कांवड़ यात्रा के अवसर पर हर कोई जिसमें भाग ले रहे हैं जाकर शिव शंकर भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करें, बधाइयां शुभकामनाएं देते

सावन के महीना है और इसी कारण जो है परंपरा के अनुसार इस बरिस के कांवड़ यात्रा कांवड़ियों को इस बरिस के कांवड़ियों को

ये पर्व जो है ना एक दो ना सौ हजार लेकिन मिलजुल मिलियार्ड में से और ये पर्व को मनाते हैं। जाकर क्यों ना शिव शंकर भोलेनाथ इनकी मनोकामना पूर्ण करेगा।

0: श्रावण मास का पवित्र पर्व जो चारों ओर भक्ति की खुशबू से महकता है, जहां प्रकृति भी झूमकर महादेव और श्री हरि की उपासना में लीन हो जाती है, उसी सावन के रिमझिम फुहारों के बीच हमारा जीवन एक अंतहीन दौड़ जैसा लगता है। जैसे तपती दोपहर में कोई प्यासा हिरण रेगिस्तान में पानी की तलाश करता है, ठीक वैसे ही हम सब भी अपने मन में इच्छाओं के आलीशान महल बनाते चले जाते हैं। हम सदैव यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ सुखों की बहार रहे और सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से हम निवृत्त हो जाएं। पर सच तो ये है कि भौतिक संसार की सारी खुशियां उस बुलबुले की तरह हैं जो बनते ही फूट जाते हैं। इच्छाओं और सुख दुख के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही बता दिया था, और वो रास्ता है एकादशी का व्रत। इसी दिव्य परंपरा की पावन श्रृंखला में आती है कामिका एकादशी। ये पावन तिथि हमारे जीवन में सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान बनकर नहीं आती, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली एक नई उमंग लेकर आती है। ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के विकारों को छोड़कर शांत मन से प्रभु से जुड़ने और खुद को भीतर से रूपांतरित करने का एक उत्सव है। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत जिज्ञासु भाव से भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपना प्रश्न रखा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसे करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त जगत के स्वामी और करुणा के सागर है, मंद मुस्कान के साथ बोले, हे कुंती पुत्र, तुमने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा और महिमा इतनी पावन है कि केवल इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने नारद को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, कामिका एकादशी का व्रत समस्त पापों के भारी बोझ को क्षण भर में भस्म करने की शक्ति रखता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से या स्वर्ण और वस्त्रों सहित करोड़ों गायों का दान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य कामिका एकादशी के मात्र एक उपवास से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु और माधव के नामों का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक उपवास रखता है, उसे जो पुण्य फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थों में स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी कहीं अधिक है। ब्रह्मा जी ने इस व्रत को अश्वमेध यज्ञ के तुल्य बताते हुए कहा कि जो भक्त इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहते हैं, उनके पुण्यों का हिसाब लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। उन्हें भविष्य में कभी यमराज के पाश का भय नहीं सताता। कामिका एकादशी पर दीप दान का भी एक विशेष महत्व है। जैसे पुराने जमाने में लोग रास्ता दिखाने के लिए मशाल जलाते थे, वैसे ही इस दिन भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से हमारे पितरों के रास्ते भी रोशन हो जाते हैं और उन्हें उच्च लोकों में स्थान मिलता है। अगर हम इसे आज के वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो एकादशी का उपवास हमारे शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह है, जो हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है, शरीर की कोशिकाओं को खुद को साफ करने का एक मौका देता है। एकादशी का व्रत विज्ञान और आध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत मेल है जो हमारे तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। कल्पना कीजिए, जैसे हम साल भर पहने हुए गंदे कपड़ों को धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हमारे जाने अनजाने में किए गए पापों की सफाई के लिए ये एकादशी एक दिव्य स्नान की तरह है। आंतरिक शुद्धिकरण के साथ साथ इस दिन है जहां प्रकृति भी झूमकर महादेव और श्री हरि की उपासना में लीन हो जाती है, उसी सावन के रिमझिम फुहारों के बीच हमारा जीवन एक अंतहीन दौड़ जैसा लगता है। जैसे तपती दोपहर में कोई प्यासा हिरण रेगिस्तान में पानी की तलाश करता है, ठीक वैसे ही हम सब भी अपने मन में इच्छाओं के आलीशान महल बनाते चले जाते हैं। हम सदैव यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ सुखों की बहार रहे और सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से हम निवृत्त हो जाएं। पर सच तो ये है कि भौतिक संसार की सारी खुशियां उस बुलबुले की तरह हैं जो बनते ही फूट जाते हैं। इच्छाओं और सुख दुख के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही बता दिया था, और वो रास्ता है एकादशी का व्रत। इसी दिव्य परंपरा की पावन श्रृंखला में आती है कामिका एकादशी। ये पावन तिथि हमारे जीवन में सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान बनकर नहीं आती, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली एक नई उमंग लेकर आती है। ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के विकारों को छोड़कर शांत मन से प्रभु से जुड़ने और खुद को भीतर से रूपांतरित करने का एक उत्सव है। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत जिज्ञासु भाव से भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपना प्रश्न रखा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसे करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त जगत के स्वामी और करुणा के सागर है, मंद मुस्कान के साथ बोले, हे कुंती पुत्र, तुमने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा और महिमा इतनी पावन है कि केवल इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने नारद को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, कामिका एकादशी का व्रत समस्त पापों के भारी बोझ को क्षण भर में भस्म करने की शक्ति रखता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से या स्वर्ण और वस्त्रों सहित करोड़ों गायों का दान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य कामिका एकादशी के मात्र एक उपवास से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु और माधव के नामों का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक उपवास रखता है, उसे जो पुण्य फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थों में स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी कहीं अधिक है। ब्रह्मा जी ने इस व्रत को अश्वमेध यज्ञ के तुल्य बताते हुए कहा कि जो भक्त इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहते हैं, उनके पुण्यों का हिसाब लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। उन्हें भविष्य में कभी यमराज के पाश का भय नहीं सताता। कामिका एकादशी पर दीप दान का भी एक विशेष महत्व है। जैसे पुराने जमाने में लोग रास्ता दिखाने के लिए मशाल जलाते थे, वैसे ही इस दिन भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से हमारे पितरों के रास्ते भी रोशन हो जाते हैं और उन्हें उच्च लोकों में स्थान मिलता है। अगर हम इसे आज के वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो एकादशी का उपवास हमारे शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह है, जो हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है, शरीर की कोशिकाओं को खुद को साफ करने का एक मौका देता है। एकादशी का व्रत विज्ञान और आध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत मेल है जो हमारे तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। कल्पना कीजिए, जैसे हम साल भर पहने हुए गंदे कपड़ों को धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हमारे जाने अनजाने में किए गए पापों की सफाई के लिए ये एकादशी एक दिव्य स्नान की तरह है। आंतरिक शुद्धिकरण के साथ साथ इस दिन भगवान की आराधना में तुलसी जी की महिमा कुछ वैसी ही है जैसे तपती धूप में किसी घने पेड़ की शीतल छाया। भगवान कृष्ण को तुलसी की मंजरी और पत्ते चढ़ाना उन्हें सोने चांदी के दानों से भी ज्यादा प्रिय है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से तुलसी दल भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। ये कामिका एकादशी का व्रत एक कल्प वृक्ष की तरह है, जिसके नीचे बैठकर आप जो भी मांगते हैं भगवान उसे पूरा करते हैं। श्रावण मास में प्रकृति के व्याप्त इस नूतन स्फूर्ति और अलौकिक नवचेतना के मध्य जब हम पूर्ण निष्ठा के साथ हरि नाम का जप करते हैं और खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जो कोई भी इस कथा को प्रेम से सुनता है या पढ़ता है, उस पर भगवान कृष्ण की वैसी ही कृपा बरसती है जैसे सावन की घटाएं धरती को तृप्त कर देती है। आइए अपनी इंद्रियों को संयमित करें, मन को गोविंद के चरणों में अर्पित करें और इस एकादशी को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला एक अनुभव बनाएं। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी प्रिय दर्शकों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बिफोर अ सिंगल ड्रॉप देयर इज अ हार्ट बीट। आधारित।
2: तो यहाँ तक आप ये शुभ संदेश श्रवण किए हमारे साथियों एक दसी के अवसर पर, और ये प्रस्तुत किया गया खास करके इस्कॉन के जरिए से, इनके मदद से जो मंदिर बन रहा है इस फंड को रात, और मंदिर अभी नहीं बन के तैयार हुआ है, बन रहा है दोस्तों, और आपकी मदद की इसमें भी ज़रूरत है। इसमें अगर आप कुछ मदद भी देना चाहते तो अवश्य मुमकिन है, और ये शुभ काम में शुभ कार्य करते चलो साथियों जहाँ तक हो सके, क्योंकि मंदिर जो है और हर एक के लिए ना समाज सेवक जो है वो अपना कार्य भी करते रहते। आप भी एक जो है जाकर देखे तो आप भी एक धर्मवीर हो ना, धर्मवीर जो आप हो तो इसमें ज़रूर अवश्य आप चाहे तो भाग ले सकते हो, और मंदिर जो है कॉन्टैक्ट कीजिए मंदिर की बस दूर से हमारे साथियों। घर के तरफ देख रहा हूँ, 5 मिनट बाकी है एक बजने में। प्रभु शिव चेतन जी और उनके परिवार समस्त परिवार की तरफ से आपको एक शुभ दिन, और खसी खंड दख फैन साथ रख दोस्तों, फैन भी कहते कहते हैं, और जाकर श्री कृष्ण भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। 2 और 3 के दरमियान श्रीमान राजकुमार रौली मोहन आज अभी आएंगे, और
3: verteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
4: अडवोकेट कंटोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
5: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
6: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan! Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: मतलबी लोगों के ये पांच लक्षण। पहला, मतलबी लोग हमेशा दूसरों का पैसा खर्च कराते हैं, जब अपना मौका आता है तो कंजूस हो जाते हैं। दूसरा, मतलबी लोग हमेशा आपको तभी याद करते हैं जब उनको अपना काम होता है। तीसरा, मतलबी लोग काम निकल जाने के बाद कभी आपको याद नहीं करते और ना ही कभी आपका हाल पूछते हैं। चौथा, मतलबी लोग हर बात में पहले अपना फायदा और नुकसान देखते हैं। पांचवा, मतलबी लोग कभी भी आपकी परेशानी के समय में आपका साथ नहीं देते और सबसे पहले आपको छोड़कर चले जाते।
2: पहले लोग घर के दरवाजे पर आदमी रखा करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में ना घुस जाए। आजकल लोग घर के बाहर कुत्ता रखते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और हाजत के लिए घर के बाहर जाता था, अब खाना बाहर खाता है और हाजत घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और बाहर वालियों को नाचने के लिए बुलाया जाता था, अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था, अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। गांव के बुजुर्ग पूरे दिन आग से नहीं उठेंगे और पूछने पर बताएंगे, ये तो ठंड कुछ भी नहीं है, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। लोगों ने अपने घरों को जन्नत बना लिया है पर जन्नत में घर बनाना भूल गए हैं। शीशा और रिश्ता बहुत नाजुक होते हैं मगर इनमें एक फर्क जरूर होता है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो कमेंट में यस।
3: Bent u eens met de stelling, Torsten? Weet ik niet. Aap jano. Phir bhi ye sahi haqeeqat hai. Pehle aur aaj mein yahi farak hota hai na.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahwa.
6: Digitaal radio. Internet fahwanfm.nl.

तारीफी तारीफ से और जाकर ये उस्ताद की उस्ताद कलाकार है ना, और क्या है हमारा ही कलाकार। आज दोपहर के प्रोग्राम शनिवार के जो है 8 augustus 2026, 8:01 बदम के फोड़ जाते हैं सी।

17 minuten over 1. Zaterdagmiddag. 8 augustus, hè.

एक से बढ़कर एक न सुन रहे हो आप। ये कला है कलाकारों की, कमाल, खास करके संगीत न, संगीत की कलाकारी।

यही तो कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, स्वर्ग है। माँ नहीं होते तो हम कहाँ से होते ना।

माँ के कर्ज से उत्तीर्ण हो सकता है? कौन किया वो कहीं शख्स? श्री हनुमान स्वामी बाबा वो कर बैठे, उनके छोड़कर और कोई भी नहीं।

0: सिंह शिवनाथ
1: बना कर देखो होती है मोहब्बत क्या।
0: उन्हीं के कमाल है अभी माध्यम है बाहुन की।

0: चाहते हो जाकर करो साथियों
1: नजरों में समा कर देखो अपना तो बना कर
0: जो मिलना है जो नसीब तकदीर में रहेगा वही मिलेगा ना।
1: होती है मोहब्बत
0: जिन लोगों ने किए है उनसे जरा से पूछो।

0: मत भूलो कौन हो तुम, कहां से आए हो, अब इस देश में रहते हो।
1: आओ मिलके बढ़ाओ रे
0: बैंकिंग ब्लैंक यूरोपियन, अपनी संस्कृति सभ्यता अपनी भाषा मत भूलो कभी। बताओ कौन हो, कोई ये सवाल आपसे कर बैठे तब। रवीन बलदेव सिंह डंक

निकल आता है आंसू जब मुलाकात नहीं होती, टूट जाता है दिल जब बात नहीं होती। तेरी जान की कसम मेरी जान, हाँ तेरी जान की कसम मेरी जान, तेरी याद ना आए ऐसी कोई रात जो जाकर नहीं होती ना।

महान कलाकार आशा भोसले जी, उन्हीं की कमाल। क्लासिक हिंदी सॉन्ग है हमारे साथियों, फिल्म का नाम तीसरी मंजिल, स्टार कास्ट इस फिल्म के शमी कपूर और आशा परेख।

और इसीलिए जो कहता हूँ कि सूखे फूल को तोड़ने वाला कोई नहीं, सूखे फूल को तोड़ने वाला कोई नहीं, टूटे दिल को जोड़ने वाला कोई नहीं। कितनी मोहब्बत है उनसे, काश वो जान ले। हाँ हाँ, काश वो जान ले। अफसोस की बात, उसको बताने वाला कोई ही नहीं।

और बता दो जरा से कि जिंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है। मेरी जिंदगी तो एक अधूरी कहानी है, चाहते तो मिटा देते हर दर्द को, हाँ चाहते तो मिटा देते हर दर्द को, मगर ये दर्द ही तो उसकी, हाँ हाँ उसकी आखिरी निशानी है।

अब इसीलिए एक वादा किया था, एक वादा निभाने के लिए, हाँ एक वादा किया था, एक वादा निभाने के लिए, एक दिल दिया था, एक दिल पाने के लिए, लेकिन उसने मोहब्बत सिखा दी और कहा मैंने तो प्यार किया था, मैंने प्यार किया था तुम्हें आज माने के लिए हमारी साथियों, और ऐसा गलती कभी नहीं करना।

ये इश्क वाले ये इश्क वाले वफा की कीमत क्या जाने, बेवफा है ये गम की मोहब्बत हाँ क्या जाने। मिलता हो जिन्हें हर मोड़ पे नया हम सफर वो सच्चे प्यार की कीमत क्या जाने।

पद्मश्री कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल इन दोनों की आवाजों में कि मेरे दिल को अब किसी से गिला नहीं, दिल जिसे भी चाहा वो मिला नहीं। बदनसीब कहूं या वक्त की बेवफाई, फूल जो लगाया वो कभी भी, हाँ कभी भी खिला ही नहीं।

आशा भोसले। उन दिनों की बात है ना, एक कलाकार की कहानी यही है, वो हमेशा साथ है, मरहूम कभी नहीं होते।

साथियों, बड़ी बड़ी बातें करते हो वैसा साथ निभाओ को क्या, बुलाने पर तो सब आते हैं, तुम याद करने पे आओगे क्या। गलती कर दो, गलती कर दूं नादानी में तो तुम समझाओगे क्या। लाख कमियां निकालिए, हाँ लाख कमियां निकाले ये जमाना, तुम फिर भी अपना बनाओगे क्या, बताओ आओ चल के।

चुप है लेकिन चांद खामोश नहीं। कैसे कहूं कि आज फिर मुझे होश नहीं। इस तरह डूबा हूं तेरे मोहब्बत की गहराई में कि हाथ में जाम है, हाँ हाथ में जाम है, लेकिन पीने का हमें जो होश ही नहीं।

शरीर ने जैसा चाहा वैसा ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम, किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगता है बहुत बदल गए हैं हम।

आती है तो कभी आंखें भीग जाती है। आपकी याद आती है तो कभी आंखें भीग जाती है, तो कभी यादों में रातें बीत जाती है। कोशिश तो बहुत की पर मगर यही तो है, यादें तो यादें है ना, कभी हम हार जाते हैं और कभी ये यादें जो है जाकर हार जीत का खेल में जीत ही जाते हैं।

0: ये इश्क आशिक होश बातों का अक्षर नहीं था, दिल हमारा तो शायर नहीं था, तूने लिख दी ये तकदीर वरना इश्क वफा मुकद्दर नहीं था। तेरी नजरों के कारण छूटे है दीन और धर्म, किया ये तुक्के या अभी कुछ और सितम। नहीं संभाला दिल मेरे संभाले इसे कर दाता, हाँ इसे कर दाता तेरे हवाले। तू मिटा दे या चाहे बचा ले, या इश्क पे मेरे चला दे अपनी मर्जियां। तेरा तेरा तेरा हाँ तेरा हुआ हाँ इश्क तेरा तेरा तेरा हुआ हाँ, यही मेरा कहना है। और यूं ही हमारे साथ क्यों आप क्यों आप एक स्टेशन जनता के वाज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 घंटे लगातार इस सारी जहान में इसे आप सुन सकते हो, सारी दुनिया में या सारी सिस्टम में संसार में इंटरनेट के जरिए fahunfm.nl।
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahon.
0: Digitale radio. FahonFM.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-3652-2747। मेरी इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitaal radio, internet fahonfm.nl.
7: श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं होती अगर आपके कर्म सच्चे हैं तो लोग खुद ही आपको समझेंगे जैसे सूरज को चमकने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती वैसे ही अच्छे इंसान को अपनी अच्छाई बताने की जरूरत नहीं होती
8: लोहे को कोई खत्म नहीं कर सकता उसकी अपनी जंग ही उसे खत्म कर देती है बिल्कुल इसी तरह इंसान को भी कोई दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता उसकी अपनी नेगेटिव सोच ही उसे अंदर से खत्म कर देती है फर्क सिर्फ इतना है कि लोहे के पास कोई अधिकार नहीं लेकिन इंसान के पास है वह चाहे तो अपनी सोच को जंग लगने दे या फिर खुद को निखार कर चमकता रहे क्या तुम्हारी सोच तुम्हें बना रही है या बर्बाद कर रही है फैसला तुम्हारे हाथ में है
9: जिंदगी में तीन चीज कभी किसी से मत मांगना समय प्यार और सम्मान क्योंकि ये चीजें बिना मांगे वही शख्स देता है जो आपकी कद्र करता है
10: राम खिलावन ये देवी जी हमेशा भी प्रोग्राम सुनते हैं और आज उनकी मांग पूरा करना है या नहीं चल के सुनते हैं उनकी ख्वाहिश क्या है

और कहना है ये देवी जी इरन राम खिलावन सर्व भवंतु सुखिना है उनकी बहन यानी इन लोगों के और तरफ से हर एक कोई जो ये धर्म को पालन करते हैं भगवान उनके कल्याण करें। लेकिन यही सर्व भवंतु सुखिना जो कह दिया तो कह दिया, उसका मतलब जो महत्व जो है और जाकर हर एक कोई आप खुश हो तो हम खुश हैं।

0: ये खास नंबर जो है पसंद किया है।
1: आसमान है चलती
0: सुपुत्र बेटा जसवीर पूरन
1: फिर क्यों मुझको लगता है।
0: हाँ जसवीर के पसंद है, उनकी फेवरेट सॉन्ग है हमारे साथियों।

वाह वाह कलाकार, प्रार्थ है ऑन स्टेरफ्लेक नेट व्यूल एक नेट व्यूल बेस्ट लोग सुनार्स संगीत में

आवाज के बारे में आपको क्या कहना है? यही तो है फाहुन हमारे साथियों।

इस पल में मैं आपसे क्या कहूं, वो रूठ गए मेरे अंदाज देखकर, वो रूठ गए मेरे अंदाज जो जाकर देखकर बदल गए, मेरे जज्बात देखकर हजारों टुकड़ों किए उन्होंने मेरे दिल की, और खुद ही रो पड़े हर टुकड़े, हर टुकड़े पे अपना ही नाम देखकर। दोस्तों,

बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर, हाँ हो सके तो बात कर किसी बहाने से। तू लाख खफा ही सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तो कोई टूट गया है, तेरे रूठ जाने से ना।

इसीलिए तो कहता हूँ कि सूरज से कहो रोशनी देना छोड़ दे, सितारों से कहो टिमटिमाना छोड़ दे। अगर तुम नहीं आ सकते तो अपनी यादों से कहो हमें सताना छोड़ दे। साथियों, ये फाहुन के प्रोग्राम जो आप सुन रहे हो, ख्याल जब उन्हें मेरा आया होगा, मेरी याद ने उनको सताया होगा, भूल ना पाए जिन्हें हम आज तक, हाँ भूल न पाए जिन्हें हम आज तक, कैसे उन्होंने हमें भुलाया होगा।

के दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसी की होते गए।

वाह रे वाह, बदले बदले से लगते हो। हाँ हाँ, बदले बदले से लगते हो, क्या बात हो गई? शिकायत मुझसे है या किसी और से मुलाकात हो गई?

हाँ कलाकार तो अपनी अपनी जगह होते ना, आप ही से कहता हूँ कि तुझको अपनी रूह में उतार लूँ मैं, खुद को तेरी चाहत में सवार लूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे इस दुनिया में और सा कुछ और चीज, बस एक तू मिल जाए, एक तू मिल जाए तो अपनी जिंदगी गुजार लूँ मैं साथियों।

0: साथियों, नसीब के खेल भी अजीब होते हैं ना। सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाना है, छूट जाते हैं। और जो करीब होते हैं हमारे प्रिय और दोस्तों, हमारे मित्रों, फाहुन
1: ये बता दे तुझे
0: हिंदुस्तानी रेडियो पे जहाँ पर आप चून हो, परमाश्री मोहम्मद रफी साहेब, शमशाद बेगम, इन दोनों की आवाजों में यू वेल, यही कहता हूं मैं ऑन स्टेर फलक है।

यूं ही कह दूं आपसे कि हंसते दिलों में गम भी है नबी जी, मुस्कुराती आंखें कभी नम भी है। दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी ना रुके, क्योंकि आपकी हंसी के दीवाने हम भी है। यूं ही और इशारे वो इशारों में कह देते हैं

राहुल आपके साथ कभी नहीं छोड़ता है। दिल रोया पर आंखों को रोने न दिया, सारी सारी रात जागे खुद को सोने न दिया, इतना करता है याद आपको, इतना करते हैं याद आपको, पर इस बात का एहसास आपको होने न दिया। यूं ही आपसे कहता हूँ और आपको याद दिलाते हुए ये सुना दूँ

जब आशिक की बात होता है तो दिल डरता है, खौफ है ये इस बात से हमारी साथियों, क्योंकि एक कुछ उलझा सवालों से डरता है दिल, ना जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है दिल। किसी को पाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, पर किसी को खोने से डरता है दिल। यूं क्यों ये बात है, क्योंकि अकेले तो आए, अकेले जाना, अकेले जीना है, क्यों डरता है।

को गाली देने की हिम्मत आती है भाई। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है,

0: luistert naar Hindustani Radio.
1: Radio Faro.
2: Digitaal radio. Internet faro.fm.nl.
3: तो हमारे साथ ही जैसे मैंने आपसे बतलाया खास करके प्रोग्राम आप जो सुन रहे हो इसमें संगीत जो पेश कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ किसी से जरा से बात हो जाए काफी दिनों के बाद। भैया कांति कुमार
4: बोलो, भैया
3: कैसे आप हो? ठीक है ना, बहुत दिन बाद आपसे फिर मुलाकात भेंट भइल। आज इस पल जो है एक मैंने हार्दिक बुलाए कि आपसे कुछ बातचीत हो रहा है, और जो है अब इन दिनों इंटरनेट के जरिए से रेडियो सुन सकते हो आप ओवरऑल और सुनते हो। थैंक यू वेल दैट यू कॉल बैक। अब और कुछ बताओ, अब हम सुनी
4: हम
3: हाँ इंटरनेट पे खोजिए तू तो पाइए इंटरनेट पे फाउन FM.nl हाँ तो ऊपर मिली छ
4: हम खोजो है लाभ
3: और आप तार के लिए बहुत आपको डंक वेल हृदय से धन्यवाद, तहदिल से शुक्रिया भैया। और कांति कुमार जी न लंग तय तो हो रही किस तरह मन
4: जाने आप तू तो बोल रहे थे बोले किन किन टेलीफोन टेलीफोन के लिए भी इंटरनेट बोल के
3: लिया या ja, het komt goed. Vier, dank u wel. Ik wens u gezegende mooie dag. Het is bij Kanti Kumar.
4: Van Belkerke.
3: Atje, alsjeblieft. Atje.
4: Atje, bij
3: je. Ja, goed. Gaat u goed. Je hebt allemaal bij je Kanti Kumar. Die hebben we zaten. En er is iets van ons gebaat. Dit is

जो भी कहो पैगाम ने प्रोग्राम वाहन की मैं आपके साथ शाम पूरन आपके साथ जो दे रहा हूँ सोचते हुए प्रोग्राम आपको पसंद

बादशाहों के बादशाह सातो सुरों के बादशाह परमाश मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में ये नंबर को आप सुने, जबकि मुझे बेहद खुशी हुआ और मैंने और एहसास हुआ कि पता चला कि हमारी अजनबी जी प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो मेरे तरफ से आपको और यूँ ही अजनबी जी एक सही हिंद मुईदा कहते हैं आपके साथ भी देने के लिए, हौसला देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। अजनबी जी अगर वक्त मिले समय मिले तो अगर आकर आप एक दो शेर शायरी शेर कह देते लोगों की जो है आपकी फैंस जो है हमेशा वो इंतज़ार भी करते।

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: और यही सोच रहा हूँ जिन अंदाज में ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको पसंद आता हुआ होगा। कोई गलतियाँ हो जाए माफ कर देना, इंसान बताती हूँ हमारी दोस्तों। और अपने अंदाज में ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरा से ये मैं आपसे बतला दूँ कि खामोशी का सिलसिला अब शुरू हो चला है। अल्फाजों ने इजाजत गंवाकर खामोशी का दामन पकड़ लिया है। लगा उसे कि आवाज उसकी दूर तक जाएगी। अब समझ आया कि खामोशी ने

या हमारे साथियों, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों, और अर्ज क्या है? अर्ज जो है कि तुम मेरी चाहत हो, कोई तुम्हें चाहे क्यों? कि तुम मेरी सोच हो, कोई तुम्हें सोचे क्यों? कि तुम मेरी आईना हो, कोई तुम्हें देखे क्यों? कि तुम मेरी दुआ हो, कोई तुम्हें मांगे क्यों? और यही अर्ज है मेरा कि

फिल्म का नाम है दो दिल। नई जदीद 65 की फिल्म है।

प्यार मोहब्बत लौफ इश्क ये सब क्या से क्या न करवा देते हैं ना। ये जो है प्यार और भरोसा कभी मत खोना, प्यार और भरोसा कभी मत खोना। प्यार हर किसी से नहीं होता और भरोसा हर किसी पर नहीं हो सकता। दोस्तों इस पे आप जो है क्या कहना है, कुछ कहना है, तारक नंबर 0 7 3 2 6 2 6 7 7 और

खुशद खूबसूरती इसे अंजाम यही होता है ना। और आप ही से कहते हैं, देखो जाकर आईने में जरा से।

कलाकार अपने अपने जगह हर एक को यो है, हर कलाकार के तारीफ कहाँ तक करे और किन शब्दों में करे। दादा हेमंत कुमार की आवाज आप श्रवण किए। नसीब में जिंदगी भर तुम्हारा साथ हो या ना हो, मगर एक बात हमेशा याद रखना, इस दिल में हमेशा सिर्फ तुम, हाँ तुम, हाँ यकीन मानो तुम रहोगे।

साथियों कुमार सानू परमाश्री कुमार सानू साधना सरगम डुएट सॉन्ग है स्पेशल आप ही के नाम

यूं ही आपसे बता दूं, ये बात जो है इस वक्त की पल ये घड़ी जो है तेरा पता नहीं, पर मेरा दिल कभी तैयार नहीं होगा मुझे तेरे अलावा, मुझे तेरा अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं होगा। शब्दों है ना, एहसास दिलाना होगा कि एक तू ही है जो दिल में समा गया है, वरना कोशिश तो हजारों ने की। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम आप ही के नाम, हमारे साथियों हमारे कार्यक्रमल 07 3 62 20 77 nog eens 07 3 62 77 आप ही की हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन फाहुन रेडियो पे आप जो चुन हो उस

बल गोविंद सिंह। गया के निवासी बाल गोविंद सिंह की आवाज।

आदरणीय साथियों, ये तो है नगमा, आप सुन रहे हो ये प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है, फिर भी एक नंबर मैं आपको यहाँ सुनाने वाला हूँ। तो काफी दिनों के उन दिनों के बाद जो कहता हूँ नेकन सिंह सेस्तक के, तो दत्त बस यूनिक अति यूनिक वैसे मैं से, और एक व्यक्ति ये कलाकार जो है मारियो के हरी के नाम से वाकिफ थे ये हमारे भैया, और एक नंबर गुलामी के जंजीर लाइफ रिकॉर्डिंग ये प्रोग्राम जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मार्गो मूर्ख के हरि के जो दादे संगीत में जो भाग लेते हैं कलाकार जो है तो जानते होंगे जरूर, और जो है श्रीमान जो है गुप्तार मार्ग मूर्ख के हरि ना, उनकी कमाल चल के सुनते हैं।

0: सहित वरनाथ रक्तदान हस्ता अक्षर दो दिल्ली तुला पे चढ़ना था। आजादी के बलवेदी पर जब प्राणों का भेद चढ़ाना है श्री सुभाष जी का गौरव से भरी अमर कहानी है। अरे गुलामी का जंजीर सुभाष तोड़ डाला रे, गुलामी का जंजीर सुभाष तोड़वा डाला रे।
1: यहाँ भारत की आजादी की बात हो रहा है, अभी सुदाम आजाद नहीं हुआ था जब ये

बना पेशावर और पठान बन जाता है। कुटुम कबीला सब परिवार भारत माँ से नाता है। काबुल में अंजल खाता भक्त राम भी पाता है। रहमत खान नाम बताता है और पेशावर में जाता है गुलामी का।

0: Rocky, Marge Burke Harry, Bea Guptaar. इतिहास रचा है ना
1: बारह दिन उस गंदी शराब में रह करके सुभाष जब कष्ट उठाता रहा पुलिस मैन ने आकर के उनको दिन रात सताते रहा उत्तम चंद के गए मकान पर हाल उनको समझाते रहे ताले में दुख बंद पाते लेकिन पासपोर्ट बनवाता रहा यूरोप जाना ठहराते हैं और रह करके कष्ट उठाते हैं गुलामी के जंजीर सुभाष से तो

लगा। 18 मार्च को पासपोर्ट लेकर के कूच ठहराने लगा। 20 मार्च को गया रूस, 28 को जर्मन जाने लगे और हिटलर से सब हाल सुनाने लगा। हिटलर भी प्रेम दिखाने लगा। आजादी फौजी वहां शिक्षा पाने लगे और पासपोर्ट दिखलाने लगे। गुलामी का दंड सभा से दौड़वा।

वन में पहले पहल बनाई थी, ड्रेसदन नामक नगर वहां सेना टिकवाई थी, नेता के पदवी पाई, क्रांति की आग लगाई थी। हिटलर जब अपने नखरा दल एक लाइन में कर तैयार किया, कहे सुभाष सुन, 8 करोड़ का मैंने सर पर भार लिया। पर सुभाष ने कहा कि 40 करोड़ का आजाद करना हम धार लिए, और कामदेव को मार लिए, और वश का संसार लिए, गुलामी का जंजीर सुभाष से तोड़।

भारत की इतिहास के और जो देखा जाए तो भारत की और जंजीर टूटा जबकि देश जाकर स्वतंत्र हुआ उसी के बारे में, और ये जो हमारी भाई महान कलाकार गुलामी के जंजीर मार्ग मेरे के हरी के नाम से जानते हैं ये कलाकार जो है आपको सुनाए, और ये इतिहास जो है गुलामी की जंजीर टूटने के बाद फोर्द ऑन अ फंकल खाम, और ये गाया गया उन दिनों मुमकिन ऐसे नहीं था बहुत, और लोग जो अपना रिकॉर्डिंग किए हैं सुनना में तो खुशी की बात है, और आज इंटरनेट में रख दिया तो हम सब मिल के सुने ये मार्ग मेरे के हरी की आवाज़। नाम तो आप सुने होंगे ज़रूर लेकिन आवाज उनकी आज मैं आपको सुनाए ना। आप एक फाहून के माध्यम से

जहाँ जहाँ हमारी भारतीय लोग आए, संस्कृति सभ्यता अपनी भाषा कोशिश की है, तो आज सब जिंदा है ना, खुशी के बाद है।

या हमारे साथियों, ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी है, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गई वो निखर जाएंगे, और जो हमदर्दी में बह गए वो बिखर जाएंगे। तो हुस्न से यही सवाल जवाब हम करते हैं ना।

0: आप खुश नसीब हो। आवाज ये सुरों के देवी लता मंगेशकर जी की और उन्हीं की आवाज में जो आप सुने, क्योंकि वो जो कहते हैं प्यार में यही होता है ना, प्यार खुशियां जो है सब कुछ आपस में यही चाहते हैं और ये आपस में बांटना भी चाहते हैं। और मैं ये कहता हूँ, यूं ही कहता हूँ कि वो तो अपने दर्द रो रो के सुना रहे थे। हाँ, वो तो अपने दर्द रो रो के सुनाते रहे, हमारी तन्हाइयों से आंखें चुराते रहे और हमें बेवफा का नाम मिला। हाँ, मुझे जो है और हमें बेवफा का नाम मिला, क्योंकि हम हर दर्द मुस्कुराकर छिपाते रहे। तो ऐसा गलती आप मत करो हमारे साथ क्यों। फाहुन रेडियो पे आप चुने आप ही के हिट स्टेशन श्रीमान कुमार घिराऊ, उनकी परिवार समस्त परिवार और हमारे भैया शिव चेतन जी, इन लोगों के और नेतृत्व में ये रेडियो चल रहा है। इन्हीं को निर्देशन में और प्रोग्राम प्रस्तुत होता है, संघर्ष इन्हीं के है हमारे साथियों, और मैं अपने तरफ से उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतने दशकों से ये रेडियो चला रहे हैं और ये कोई बचपन का लड़का का खेल नहीं है एक रेडियो चलाना और इतने समय इतने तक यूं ही नई खतीन सोफील से ये चल रहा है दोस्तों। और फिर से एक बार मैं आज के ये कार्यक्रम में श्रीमान कुमार घिराऊ भैया शिव कीर्तन के समस्त परिवार जो है नाती पोता और उन लोगों के तरफ से आपको एक मोये दाह कहते हुए
1: गीत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी।
0: थैंक यू वेल
1: अपने।
0: और ये आवाज जो आप सुन रहे हो, ये आवाज तो है, ये कहीं हो सकता है ना, आप जानते हो किसकी है, मैं जरा से आपसे बतला दूं, ये है कैलाश खेर। मैंने कहा कैलाश खेर जुबा से ऐसा कुछ जुबा फिसल गया ना, तो यूं ही ऐसा हो सकता है।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो ऑनलाइन वेब रेडियो पावन एफएम पर चैनल 24 घंटे लगातार लाइव आपके नाम सारी सृष्टि में आप सुन सकते हो।

हाँ, इसलिए इसलिए जरा से इसे गौर से सुन लो ना। हाँ, तुझे खुद से ज्यादा जानता हूं मैं। हाँ, तेरी मजबूरियां पहचानता हूं मैं। हर अदा से वाकिफ हूं, हर अदा से वाकिफ हूं तेरी। फिर भी जाने जाने क्या उम्मीद लेकर बैठा है। रोज इबादत में सज्दे करके अपने रब से मांगता हूं मैं तेरी मुस्कुराहट की कीमत। हाँ, तेरी मुस्कुराहट की कीमत मेरी जान से ज्यादा है। एक हसीन ख्वाब है जो देखा है तेरे साथ मिलकर, एक हसीन ख्वाब है जो देखा है तेरे साथ। अक्सर ख्वाहिशों ने मेरी टूटे ना खूबसूरत लम्हे, इसलिए अक्सर नींद का तलबगार हूं मैं। हाँ, यही बात है, इसलिए अक्सर नींद का तलबदार हूं मैं। उम्मीद है एक दिन वो सुबह भी आएगी जो तेरी बाहों में होगी, जो तेरी बाहों में होगी किसी रोज। बस इसी गुर्बत हर सुबह जागता हूं मैं और यही आपसे। इजहार दिलाना चाहता हूं।

और ये रेडियो चल रहा है। श्रीमान कुमार गिराओ भैया शिव चीते प्रभु डंकुवेल। और सभी कुलेखास की तरफ से संदेश हम सब मिलके दे रहे हैं कि रेडियो फाउन पे चू रहना 24 घंटे लगातार। ऑनलाइन वेब रेडियो फाउन एफएम

साथ भी दे रही है उनसे इनके एक्टर बीबी साहिबा मीना रहीम बख्शी और बीबी साहिबा फारियल भी दंकवेल तहदिल से शुक्रिया आपको। हाँ तहदिल से शुक्रिया मीना रहीम बख्श और बीबी साहिबा फारियल फारियल तंगली ना और नाम इन दोनों की है साथ देती है जब जब वक्त मिलके तो आकर यहाँ भी प्रोग्राम और उनकी आवाज से वाकिफ आप उनकी फैंस जो है पूछ रहे हैं कैसे हो तो सलामत हो ना सलामत रहो खुश रहो और हर की सलामती तो हम चाहते हैं।

दरमियान के सारे ख्वाब कांच की तरह बिखरे मिलेंगे। मोहब्बत करने वालों के चेहरे उतरे मिलेंगे। जारी इल्जाम, सारे इल्जाम वक्त पे लगाना और ठीक नहीं है। गौर करो। आशीष में कुछ अपने मिलेंगे, यकीन मानो। और जो है

ये मैं कह डालू इस वक्त जो है हिम्मत करके, तेरी मोहब्बत में भी न जाने कितने फसाने हैं। बार बार ठुकराया तूने मुझे, बेशरम हम भी, हाँ बेशरम हम भी, फिर भी तेरे दीवाने हैं।

आपके साथ जो मिल रहा है इतना सुकून मिलता है इस घड़ी में, इस पल में जो आपके साथ बीत रहा है ना। कहता हूँ और ये जो अर्ज आप ही से है, रोज रोज तेरा इंतज़ार होता है अजनबी जी, रोज तेरा इंतज़ार होता है, रोज ये दिल बेकरार होता है। काश कि तुम समझ सकती कि चुप रहने वालों को भी किसी से प्यार होता है, ये जानते रहना कभी मत भूलना। और हमारे भाई जॉन मोकबसिम डंकवेल, और ये तो महान कलाकार इस देश के, हर कोई ये नाम जानते हैं, और आज के प्रोग्राम में साथ दे रहा है हमारे भाई जॉन मोकबसिम जी।

0: अरे वाह,
1: जो मैं पी के पास गए।
0: जरा से मैं आपको ये सुना दूं, जरूर से सुनाने वाला हूं, लेकिन आप ये जान लो कि खामोशी से मतलब नहीं, मतलब बातों से है। दिन तो गुजर जाता है, मसला तो रातों से है ना। और वो कैसे गुजरता है कौन जानता है।

0: वाह रे वाह, आप ही की तारीफ करते हुए और कलाकार जो अपने अपनी जगह होते हैं ना।
1: अब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, ऐसा ही है इश्क

0: शुक्रिया। हद अनहद की बात होने लगी है, कैसी है देखिए। और हमारे पंजाब के बहुत मशहूर सूफी संत हुए हैं जिन्होंने नाच के अपने मुर्शिद को मनाया, बाबा बुल्ले शाह जी का।
1: लाइव रिकॉर्डिंग, हाँ महफिल सजा हुआ है।

आप ही की हिस्से जो है। ये कह दूसरे राशि गौर से सुन लो, प्यार जो होता है ना आपस में, कभी सोचा ना था कि एक अजनबी जान से भी प्यारा हो जाएगा, जिसके बिना करना मुश्किल गुजारा हो जाएगा, जिसे देखने बिन कोई दिन अच्छा नहीं लग जाता, आजकल आजकल उसके अलावा कोई सपना भी नहीं आता, जिसके हर बात दिल को भाएगी, कभी सोचा ही नहीं था, हाँ कभी सोचा ही नहीं था कि उसके बिना जिंदगी ही अधूरी ही हो जाएगी। हमारी दोस्तों पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है ना, आप हो तो डरने के क्या बात है, यानी जी।

यही सिलसिला में तुमसे बहुत कुछ कहना है, मगर कभी तुम नहीं मिलते, कभी अल्फाज नहीं मिलते। यह दुनिया मिटा दूं एक पल में, एक पल में, मगर आधी कदम नहीं चलते। तू कभी रास्ते में नहीं मिलते। तुम्हें पाना, हाँ तुम्हें पाना चाहता हूँ, बता दीजिए, उम्र भर के लिए, मगर कभी हालात नहीं मिलते। तो कभी हालात नहीं मिलते। हमारी बेस्ट मैच पाहोन एफएम तारकन मंडल सुईफन तक दरी तुम्हें सस्तक तुम्हें तक सुईफन तक

0: Ja, beste oude Amalie Sunumalo. Program aap Henk in naam se hai na. Paise ki ameri to aam hai. Dil ki ameri Allah kisi kisi ko deta hai. यही मैं सोच रहा हूँ। हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन जो है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: डिजिटल रेडियो इंटरनेट fahunfm.nl।
0: हाँ तो दोस्तों, ये प्रोग्राम जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ये कार्यक्रम आप चुने आप ही के नाम से जो चल रहा है, कहता हूँ आपसे और जरूर से शहर के कोई ये जिस तरह से साथ दे रहे हैं, मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, हृदय से धन्यवाद। प्यार भी तू, दोस्त भी तू, एक भी तू, हजार भी तू। हाँ अजमी जी, प्यार भी तू, दोस्त भी तू, एक भी तू, हजार भी तू, गुस्सा भी तू, माफी भी तू, मेरे इस जिंदगी का सफर में काफी है तू, यही बतलाना था। नहीं यानी जी, आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और जो है यहाँ कार्यक्रम में आगे कहाँ आगे।
2: Only on Eros Now।

बेस्ट मैन से फाहुन इंसानी रेडियो के प्रोग्राम में ये नंबर भी आप सुने और जो है एक और सर नंबर यहीं पर मैंने चुन रखा हूँ, एक ही दम मैं आपके लिए चलाना चाहता हूँ, लेकिन जरूर और जो है तो यहाँ से ये खास सिलेक्शन जो है

कोई भी कार्य के लिए आप दरियाप्त कर सकते हो। पाहुन फरीद अलखमी ने हिंदू उमरूप नीला तारक नंबर 0 73 362 20 77 77।

0: तो कहता चलो एक ही दम आपसी, मेरी आंखों में आंसू नहीं, मेरी आंखों में आंसू नहीं, बस कुछ नमी है। वजह तुम नहीं, अच्छा वजह तुम नहीं, तुम्हारी कमी है। हाँ अजनबी जी भी प्रोग्राम सुनती है, अजनबी जी
1: लड़की लड़कों को इसलिए नहीं समझ पाती है क्योंकि उन्हें गुरुर होता है कि उन्हें चाहने वाले ज्यादा हैं। जो लड़की

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

Aartsen. Ik wens u gezegende dag. Ik zoek die nu. Oude paar hond pitjoenen hierna. Oude aapkoepelle zin ik ik eens doen. Oude je atje secretaria. Aartie ji, dank u wel. Lok jo, oude hamer saad de rehe karikne me ham un logo ko hirdey se dhanyavaad de raha hu. Gyani ji, aap bhi program sun rahe ho. Dank u wel, aapko bhi saath dene ke liye. हर एक कोई जो भारत देश इंडिया में इतने बड़े तादाद में कार्यक्रम सुनते हैं, तो जरा से आपसे कह दूं, आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या? तुम मेरे हो सबको बता दूं क्या? तेरे कलाई जो पकड़ लूं मैं, हाय मेरी जान गंवा दूं क्या? मेरा कमरा बहुत उदास है, तेरी एक तस्वीर लगा दूं क्या? तुम्हें लिखने में दिन चला जाएगा, तुम्हें सोचने में रात बिता दूं क्या? और जो है आप ही की इजाजत चाहता हूं आज के कार्यक्रम में, और चल के और कहां चलते हैं हम, आप ही से बतलाना जो चाहिए मुझे।

जिंदगी की। कार्यक्रम आप सुन रहे हो आरती जी यानी जी आप भी और सरिता डंकवेल इधर ही। हौसला बढ़ाते लोग आप

आरती जी डंकवेल हर कोई को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और यही कहना मेरी ज्ञानी जी, सांसों की महक हो या चेहरे का नूर, चाहत है आपसे, इसमें मेरा क्या कसूर, यूं ही आपसे बतलाता चलूं, और ये दिल की बात है ना।

संगीत में आप सुन ही लिए, लेखक गाने वाले सब मिलकर और संगीत भी सजाते हुए यही कहते हैं दोस्तों, यही है कि रात चुप है लेकिन चांद खामोश नहीं, कैसे कहूं कि आज फिर मुझे होश नहीं।

किस तरह डूबा हूं तेरी मोहब्बत की गहराई में, कि हाथ में जाम है लेकिन पीने का हमें होश ही नहीं, क्योंकि आपके साथ है ना।

खूब गाई है ना लता जी। अब आज इस पल के एक बात जो मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ, जरा से मैं आपसे बतला दूँ कि जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं ना, अक्सर वही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जो है जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। आप ही बतलाइए ये क्या बात है इसमें जो है, और ये कार्यक्रम में जो है आप कार्यक्रम सुन रहे हो, क्योंकि अब तक 3, 4, 5, 6 और लोग ने फोन किया प्रोग्राम में साथ दे जो दे रही हैं। आलम हसैन औरत है, नारी है दोस्तों, और ख़ास करके औरत जात क्या होता है, माँ, माँ के कदमों में जन्नत है कहते हैं, स्वर्ग वही है। माँ नहीं होते तो हम कहाँ से होते दुनिया पे ना, इस जहान में, इस संसार में। माँ है तो जन्नत, बहन है तो बहन इज्जत है ना, बीवी तो घर की जीनत, दोस्त है तो शान है, और बेटी जो है तो रहमत। हमारी दोस्तों और खास करके प्रोग्राम में नंबर आप ही स्टेशन फाहन यही है।

वादा करते हो तो वादा निभाना चाहिए ना, ये जिंदगी है जो प्यार करने वाले हैं। किसी को दर्द देना ही नहीं चाहिए जानबूझकर, फिर भी होता ही रहता है। जो सहन कर पाता हो तो कर लेते, लेकिन इसमें भी जुदाई में कितने मर भी जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं।

तो यूं ही कहना मेरा यही है झूठे कसमे वादे नहीं दोस्तों। हमारी मित्रों निदुन क्योंकि ये मैं यूं ही जरा से आपसे कह दूं कि झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है, झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता शायद फिर जुड़ जाएगा मगर भरोसा कभी नहीं जुड़ता दोस्तों। तो यूं ही आप जानते रहना क्या करना है क्या ये जिंदगी में नहीं करना है आपके ऊपर, ये जब मैं छोड़ ही देता हूं प्रोग्राम फाहम की आप जो सुन रहे हो। हकीकत जान लो जुदा होने से पहले, मेरी सुन लो अपनी सुनाने से पहले, ये सच लेना ये सोच लेना भुलाने से पहले। बहुत रोएगी ये आंखें मुस्कुराने से पहले हमारी। और दोस्तों

तारीफ यूं ही करता हूं ये कलाकार को, मैं जो है मैं खुश नसीब हूं, मैं खुश किस्मत हूं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना खुशकिस्मत हूँ आपके साथ जो मिल रहा है। ये छोटी सी जिंदगी है, हर बात पे खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाला उसकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, अपनी आज में खुश रहो। हमारी प्रिय दोस्तों और चू रहना इसी स्टेशन पर। क्या है ये फाहन, यही है साथ आपके मिल रहा है ना। खुश नसीब हूं मैं फिर से एक बार। आप ही के नाम ये नंबर जो है।

0: इशारा। प्यार के बाद जो होते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या से क्या मिलता है, किसको क्या मिलता है, जो नसीब जिसकी और जो जहाँ तक लिखा होता है उसी को हम ये आजमाना खास करके और मिलेगा। यहाँ पर आपसे ये कह दूं मैं, अदालत इश्क की होगी, मुकदमा मोहब्बत पे चलेगा, गवाही गवाही मेरा देगा और मुजरिम तेरा प्यार होगा। आप कोई खास करके ये के बारे में सोचते हुए यूं ही कह दूं कि लिखूं तो लफ्ज हो तुम अगर तुम्हारे नाम हम जाकर लिखूं, सोचू तो ख्याल हो तुम, मांगू तो दुआ हो तुम और सच कहूं तो प्यार मोहब्बत हो तुम ना। और आपको यकीन न आए तो चल के ये हम यहाँ शब्दों में संगीत में आपको सुना दूं कि अभी
1: अभी अलविदा

0: साथ।
1: और ये प्रोग्राम में ये खास नंबर को सुने तारक नंबर 9732077। आप जो साथ हो खुशी की बात है, खुश के बात इसीलिए कि हौसला मुझे आप जो दे रहे हो मुझे बेहद खुश हो और मैं अपना के अपने को खुश नसीब समझता हूँ। दोस्तों आप कहाँ हो मैं कहाँ हूँ ये सृष्टि में हर जगह सुनाई देते हैं, तो दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, बात दिलों की नज़दीकियों से होती है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनती है, दिल के रिश्ते जो है एक दूजे से ना बन जाता है वो किस्मत से। अकेले आए दुनिया में, हम अकेले आए हैं, यहाँ जाकर रिश्ता जो बनता है तो दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो ना जाने कितने से होते हैं। दोस्तों ये जिंदगी में ना

और अभी तो मैं आपका सेवक श्याम पूरन हुआ हमारी दोस्तों। किसी को खोकर भी उसे चाहते रहना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। हाँ हाँ, चाहत प्यार तो ये बात है, चाहत के बाद जब हुआ और रिश्ता जो बनता है एक दूसरे को, ऐसी रिश्ता आपस में हम बना लेते हैं। किसके क्यों अकेले आए, अकेले जिंदगी में जी रहे हैं फिर भी, और कैसे ये आदत हमारी पड़ जाता है ना कि किसी को खो कर भी कैसे खोएंगे। अगर आप अकेले जिंदगी में दुनिया में हो तो कैसे खोएंगे दोस्तों, और वो तो अपना नहीं हो सकता, आपके जिस्म से नहीं जुड़ा हुआ है। तो किसी को खो कर भी उसे चाहते रहना, हाँ उसे चाहते रहना हर किसी के बस की बात

एक माँ हो आप माँ माता हूँ, ये दिल की पुकार है, इसमें क्या आपको महसूस होता है ना ये आवाज सुनकर। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ रहा है जब,

कहते हैं कैसे छोड़ दूं तुझसे, और तुझसे मोहब्बत करना तू किस्मत में ना सही पर दिल में तो है। हमारी और दोस्तों पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम सुन रहे हैं, इनकी आवाज़ जो है कितना दर्द और इसमें महसूस होता है ना, एक माँ जो होता है, माँ क्या होता है, और माँ अपनी तरह से और जो है और अपने और जो है दिल से पुकार रही है, और जाकर आज के कार्यक्रम में यही मैं सुना रहा हूँ कि कितना दर्द है। सच्ची मोहब्बत तो वो है जिसमें पाने की कोई उम्मीद ना हो, फिर भी बे इंतहा प्यार हो, माँ और ख़ास करके एक बच्चा, एक लड़का, ख़ास करके उनकी रिश्ता जो होते हैं माँ की ना, तो आवाज़ जो आप सुन रहे हो माँ की आवाज़ है। कहते हैं भी माँ के और कदमों में जन्नत है, स्वर्ग है। माँ से दुनिया है,

एक माँ के दिल की पुकार, उनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, उसमें क्या, इनकी आवाज़ में क्या महसूस आपको हुआ? फिर भी कहते हैं, और जबकि और मैं अपने कार्यक्रम में इसी तरह से और चलाता हूँ, और खास कुछ बातचीत होता भी रहता है, और उसमें कोई और फोरबेल्ट भी देता चलता हूँ आपके अपने, और जहाँ तक अथाह शक्ति है मेरा पहुँच है, अजनबी से सीख कर आपसे और बतला भी रहा हूँ। मैं अपने तरफ से अपने अजनबी की वो खास करके हमेशा से तहले से शुक्रिया अदा करता चलता हूँ। मोहब्बत हो जाना अलग बात है, मोहब्बत हो जाना अलग बात है, पर मोहब्बत हो जाने के बाद हमेशा उसी मोहब्बत का ही बन के रहना असल मोहब्बत है दोस्तों। असल या नकली मुझे मालूम नहीं, यूं ही गजल है आप सुन रहे हो ना, सुनहरी गजल।

यूं ही मैं आपसे बतलाता चलूं और कोई सबक ऐसा नहीं दे रहा हूं, फिर भी आपको याद दिलाता हूं कि कोई अच्छा लगे तो उसे प्यार मत करना, उसके लिए नींदे बेकरार मत करना। दो दिन तो आएगी खुशी से मिलने, दो दिन तो आएगी खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगी मेरा इंतजार मत करना। हमारी जो है फाहुन की, सुनने वालों।

0: लंबी थी।
1: तो यूं ही जरा से सुन लो कहानी तीन दोस्तों की। कहानी तीन दोस्तों की, ज्ञान, धन और विश्वास। ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीन दोस्त की कहानी जरा से सुन लो। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक वक्त आया जब तीनों को अलग होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया। ज्ञान ने कहा मैं मंदिर, मस्जिद या स्कूल में मिलूंगा। धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा। और विश्वास चुप रहा। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। दोस्तों, ये खास वाहन के माध्यम से और मैंने आज के कार्यक्रम में आपको सुनाए, कैसा लगा? यूं ही आप चाहे तो यूं ही जरूर से और बतला भी सकते हो। हमारे चार के नंबर 0 3 2 6 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 और मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ।

शेर शायरी सीखा हूँ इसे कभी कभी कहता हूँ कि शायर की मोहब्बत होना खराब नहीं होता दोस्तों, शायर की मोहब्बत होना खराब नहीं होता, तुम्हारे सिवा पूरा एक ख्वाब नहीं होता। ईरानी जी कभी आंखें भी देख लिया करो, अजनबी कभी आंखें भी देख लिया करो, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हर वक्त बातों में सही जवाब नहीं होता, हमारी बेस्ट और लो इस तरह से प्रोग्राम पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कहना है।

और यूं ही आपसे ये कहता हूँ कि दो चीज़ें जो है, दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। हमारी और बेस्ट पावन की सुनने वालों,

वाह रे वाह कलाकार, उनकी जो है कैसे तारीफ करे। यूं ही हमेशा मैं कहता हूँ कलाकार की तारीफ तो चाहिए करने के लिए, तालियां वही चाहता है कलाकार, उसी से खुश रहता है। और जो है संगीत हम तो सब पसंद करते हैं। महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है ना, महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है, मिलन ना सही जुदाई तो मिलती है। कौन कहता है कि प्यार में कुछ नहीं मिलता, वफा नहीं या वफा ना सही बेवफाई तो मिलती है। हमारी और बेस्ट मेंशन पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन हिट स्टेशन द म्यूजिक म्यूजिक स्टेशन, और यहाँ पर बयान करते हैं

अब ये खास खास नंबर आपके लिए और बहुत प्यार के साथ हमारी बेस्ट सुनने वालों पावन के जो ट्यून है इस वक्त जो है आपको और पल घड़ी जो है जिंदगी के अच्छे से बीते, जबकि संगीत हम आपके लिए कुछ प्रस्तुत करें खास कार्यक्रम यहाँ से सुनाम तक लोग जो प्रोग्राम सुनते हैं तारीफ करते हैं उन लोगों को मैं हृदय से फिर धन्यवाद दे रहा। हमारे भाई छोटा भैया जो है खास करके देव प्रकाश पूरन कार्यक्रम भी सुन रहे सुनाम में माता श्री श्रीमती भी सुन दी और बलदेव खास करके जो है अपनी माँ के पास उपस्थित होकर और जो है साथ उनकी सेवा सत्कार जो करता है सुपुत्र होने के कारण ऐसा ही चाहिए ना अपनी जिंदगी में जो है और अपना जहाँ तक अवसर मिले और ये कार्य कर सकते हैं अपने माता पिता के किसी काम आने के लिए, इसीलिए माँ बाप पिता जो है अपने सुपुत्र सुपुत्री को और खास करके जन्म देती है जाकर जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वही काम आते हैं बेटा बेटी जितने परिवार होता है। मैं इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी है माता श्री सुनाम है और वहाँ पर उपस्थित हमारे भैया देव प्रकाश पूरन जी आज उनकी बारी है माँ की सेवा करने के लिए। तो उन्हीं के नाम हमारी भैया देव के नाम आज के कार्यक्रम में जो है एक और जो यहाँ से मैं खास करके प्रस्तुत जो करने जा वाला हूँ एक संगीत यानी कि ढूंढ रहा हूँ और उनकी पसंद होता है जो दोस्तों तो अपने अपने अपनी पसंद तो हर एक कोई को होता है ना और देव के अलहदा पसंद है उनकी हमेशा जो रहते होता है और पसंद है। कभी कभी किसी के अल्फाज इतने चुपते हैं ना कि फिर हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ क्या वाकई हम इतने ही बुरे हैं, नहीं तो देव याद नहीं तो। और आप ही के नाम से ये खास नंबर जो है माता श्री के मेरे तरफ से और अपना शीश नवाए के दोनों हाथ जोड़ के पालगी करते हैं ना देव प्रकाश पूरन राजा The heart of millions, mighty Mukesh ji।

और मुकेश जी की आवाज में ये नंबर को सुनिए, और हमारे भैया नाम जो है राजा देव प्रकाश पूरन उन्हीं के नाम से आज के कार्यक्रम में बहुत ही प्यार के साथ वो कहते हैं अपनी माँ की सेवा सत्कार करते हैं सब कोई बारी बारी जाकर, भाई बहन जितने हैं दोस्तों, माँ ये शब्द माता जो है माँ, कितना भी लिखूं उसके लिए कम है, जब लिखते हैं लिखो कितना लिखो लिखना चाहते हो, ये माँ की है उनकी प्यार जो होता है ना, माँ कितना भी लिखूं उसके लिए कम है, सच ये है कि माँ तो माँ है तो हम है दोस्तों, माँ तो माँ है और जगह माँ है तो हम है, माँ नहीं तो हम नहीं दोस्तों, यही है आज के कार्यक्रम में, और हमारे प्यारे भैया खास करके देव प्रकाश पूरन के नाम और ये नगमा ये गीत आप श्रवण किए, प्रोग्राम फाहुन की आप सुन रहे हो, और इस बार सुरनाम के लोग, ये लोग जो प्रोग्राम सुनते हैं

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 2 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

www.faunfm.nl पर आप चून हैं, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, बस सुनिए। उदित नारायण और अलका याग्निक जी, फिल्म धड़कन से निकाल रहे, जी नहीं, सॉरी, फिल्म

कितना प्यारा है ये चेहरा। उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। गीत हम तो रख दिए हैं प्लेयर में, लेकिन इसमें कितना आधा झूठ आधा सच, ये गीत के बारे में इस वक्त मुझे पता नहीं है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन कितना सच कितने झूठ पता नहीं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए।

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रवि साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फकीरा में से निकाल कर 1976 निकली सही का ये गीत आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलिक मान ने लिखा, लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

क्यों तुम पे दिल है दीवाना, एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज़ में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं, लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं। चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई। चलो सुनते हैं। तख्त का ये गीत है।

अच्छा, जुदाई के बाद यही थी, हमें तो पता नहीं था। बहरहाल हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले सोनू निगम जी। सोनू निगम जी नेकन 3 सेशन सेस्ट का ये गीत है, चलो सुनते हैं।

नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शेस्तक जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नहीं गंतक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नहीं गंतक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे, हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चला गए एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब को बहुत बेचैन करता है। रफ़ी साहब जानना चाहता है ये खिड़की बंद क्यों है, तो सुनिए।

अच्छा तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की, उन्होंने आपको बताया हो फरफा और हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है।

तुम्हें देंगे, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फॉन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से है।

ए चांद की जेवाई, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सैफ ने सहस्त्र का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत ये पेश करने वाले हैं, वो है ये गीत, चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफी साहब की आवाज़ में निगदी एन सही बंद 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। स्वागत करते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

देखती हूँ जिधर, फिल्म हांगकांग में से। जी हाँ, फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं ये शानदार गीत और हमने पेश किए ओपन एयर के सांस पर निहितिन त्वेयन शस्त्र का ये फिल्म है आशा जी की आवाज़ में। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। ओ क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

सुन जा ऐ घटा काली घटा बस एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी हाथी मेरे साथी में से निकाले निगति एने से ही तो का ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगला गीत हमने प्लेयर में आपको पता है हमने क्या रखे हैं, चलो सुनते हैं कि लता जी, जी हाँ लता जी की क्या मुसीबत है, लता जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं वो खुद कह रही है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं। मजा ही आ रहा है या नहीं, इस बात की मजा आ रहा है नहीं,

तो आपने सुने लता जी ने आपसे कहें कि उन्हें कितना मज़ा आ रहा है, ये शानदार गीत हमने निकाले फिल्म राजा जानी में से नेक दिन तुई से ही तक का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और अभी हमने गीत चलाए थे हाथी मेरे साथी की, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है, ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग इस तरह से।

0: ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाएं, कुछ ना कहो, साधना सरगम और अभी शिव जी नहीं, साधना सरगम और शान, साधना सरगम और शान, शंकर एहसान लोई के साज पर ये टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, फिल्म 10 नंबर ही तो आप देखे होंगे, मनोज कुमार की फिल्म है, मुकेश जी की आवाज़ में और लता जी। चलो सुनते हैं, इन दोनों को कितना दर्द है मुझे भी नहीं पता, मिलकर सुनते हैं।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है
2: इतना? अच्छा
1: मुझे

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर गीत हम आपको सुनाए लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। आपने बीच बीच सुने होंगे यह गीत कि दर्द मिटने का क्या दवा है, क्या सुझाव है, क्या आदिश है, बस गले में रस्सी बांध लेना और खींचवा लेना। बहरहाल ये मज़ेदार गीत हम आपको सुनाए ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ते पे सत्ता।

मैं आग दिल में लगा दूंगा एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म सत्य में सत्य पे सत्ता में से निकालकर आरती बर्मन के साज पर हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए आप ही हैं और मैं भी हूँ और चलो हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। और फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म शिकार में से निकाल रहे हैं नेगंतिन अख्तन सस्तक 1968 का ये गीत है। शंकर जय किशन के साज पर

तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, फिल्म शिकार में से निकाल लेने के दिन। अख्तन सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुनाए। चलिए, जानी दुश्मन वो भूत अख्तक फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे, संजीव कुमार का। जानी दुश्मन में से निकाल रहे हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। लता जी चलिए आपको सुना रही है इस तरह से फिल्म जानी दुश्मन, निगतिन नई खनन से 1979 का ये गीत।

लगा जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आपको सुनाए नेक दिन नेक नसीब का ये गीत फिल्म जानी दुश्मन में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

रमा रामा गजब होई गवारे। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो अगर आई लव यू की बात हुई तो चलिए हम आपको सुनाते हैं मैथ मुकेश जी क्या कह रहा है इस तरह से।

गा दीवाने झूम के माइत मुकेश की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ओफरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का, मैत मुकेश। मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं और मैं दनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत। लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकलती फिर सस्त, लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये द्वैत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराये में से निकाल कर हमने चलाए हैं, निकती फिर शस्त्र का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक भी डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया, हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफन सस्ते के ये गीत है रोशन के साज पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

मुझसे भी खफा रहना, माइकल मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाए हैं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फाउन एफएम पिंटनल पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप चाहे जहां भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

शम्मा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं। फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, शम्मा बुझने को चला। फिल्म गंगा की लहरें, हाँ गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है।